प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयरडील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी ले पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयरडील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street, North East, Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3332 नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फिश या स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हॉल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसीं रियो बैंकुएट हॉल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंकुएट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 28 पंजा होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: प्रोग्राम का ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144-3670 त्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: परमेश्वर दत्ता

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है यूनिट नंबर 2121 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन बार्स वॉशरूम वैनिटी क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसीं अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जां फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: परथाए साखी महापुरुख बोल दे।
1: सच्चे पातशाह धन गुरु अमरदास साहिब जी, श्लोक महला तीजा। श्लोक दे विच सानू समझाउंदे आ परथाए साखी महापुरख बोल दे। जेडे रब दे बंदे अकाल पुरख वाहिगुरु दे भेजे होए महापुरख, जिन्हां विच साडे गुरु साहिबान, भगत साहिबान अते होर जिन्हां ने रब दी प्राप्ति कीती, ओ अकाल पुरख वाहिगुरु दे प्यारे, जदों कोई किसे दे बाबत फरमान बचन सुणाउंदे आ जां जदों असी साखियां सुणदे आ, जिवें कि जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, पहले पातशाह ने दीन दुनिया दे उत्ते आ के जगत जलंदे नूं तारन वास्ते प्रकाश धारिया अते निर्मल वक्खरा निराला सिख पंथ स्थापित कीता, सिख कौम नूं जन्म दिता, तां सच्चे पातशाह जी ने अपनियां उदासियां दे विच बेअंत ही पापियां नूं, माड़े कर्म करन वालियां नूं सुधारिया। ओ असी इतिहासक साखियां पढ़दे हां, जिवें कौडा राक्षस ते सज्जन ठग ते होर अनेकां लकाई दा भला कीता, पर ओ जिहड़ी साखी असी पढ़दे हां ओ भावें सज्जन ठग दे परथाए होवे, भावें कौडे दे परथाए होवे, ओ सारी दुनिया नूं जिहड़ा उपदेश आ ओ सच दा, वाहिगुरू दे डर दा, सच्चे मार्ग ते चलण दा, ओ सारिआं दे वास्ते सांझा। ए नहीं कि ओ सिर्फ उन्हां दे बाबत आ। इस करके सच्चे पातशाह जी फरमान विच सानू समझाउंदे आ परथाए साखी महापुरख बोल दे, सांझी सगल जहान है। भावें कि महापुरख जिहड़ी साखी जिहड़ा जो कौतक रचदे आ ओ किसे इक मनुख नूं संबोधन हो के उहनूं समझाउंदे आ, पर हुंदी ओ सारे संसार दे वास्ते सांझी सिख्या। जिवें सच्चे पातशाह जी ने गुरबाणी दे विच भी भाई लालो नूं संबोधन करके जिहड़े बचन ने ओ उचारे ने, पर ओ जिहड़ी सिख्या ओ सारी कायनात दे वास्ते सांझी है।
0: सांझी सगल जहान,
1: सारे जहान नूं सांझे तौर ते इक्को ही सिख्या। कोई भी साखी दे विच जे साखी दे विच सेवा दी सानू सच्चे पातशाह जी कीमत दसदे आ, सच बोलण दी, सच्चे मार्ग ते चलण दी, पाप तों दूर रहण दी, माड़े कर्मां तों बचण दी, तां ओ सारे जहान वास्ते उन्हां साखियां दे विचों असी सिखदे आ, पर ओ सारे सगल

रे, श्वेत छतर सिर मुकट बेराजे, देखत ना उस चेहरे नूं। श्वेत छतर सिर मुकट बेराजे, देखत ना उस चेहरे नूं। ऊंची थड़ियां खेती बोवे ये भूल गए नज डेरे नूं। ऊंची थड़ियां खेती बोवे ये भूल गए नज डेरे नूं। मत दे दी बेरे नूं, मत दे दी है बालम बेरे नूं, मत दे दी है बालम। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नूं। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नूं। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नूं। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नूं। मत दे दी है बालम बैरे नूं, मत दे दी है बालम। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नूं। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नूं। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नूं। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नूं। मत दे दी है बालम बैरे। आत्मा अब रो रही है, परमात्मा से पुकार करी है कि मेरे को तो इस काल ने काल रूपी इस मन के साथ बांध दी, इसके साथ मेरा मेल कर दिया। इस काल ने अपना एजेंट छोड़ रखा मन, आत्मा के साथ ये नकली मालिक बन गया इसका। मन की और आत्मा की खुराक अलग अलग। आत्मा की खुराक परमात्मा की भक्ति, धर्म पूर्ण करना, विनम्र रहना, और मन की वृत्ति बकवाद करना, बेमतलब अहंकार बनाना, रगाने सुनना, मांस खाना, शराब पीना, ताश खेलना और बकवाद, राजनीति में गप्पे मारना। और भक्ति करनी तो उल्टी करनी, अच्छी भक्ति नहीं करने का। अब जैसे कोई साधना कर रहा है, कोई सोमवार का व्रत रखा है और उसने कोई ना कह देना शनिवार का व्रत बहुत लाभ देता, वो शनिवार का भी शुरू कर देगा। और उसको कोई नौका दे वह ना मनसा देवी पर, और वहां एक धागा बांध जाओ ना हरि मनोकामना पूर्ण, वहां भी भाग लेगा। और कोई इसने नौका ना कहा जा सतलोक आश्रम बरवाला में, नौको ना वहां के दरिया है, और वहां तो दरका रहा था मनसा देवी पर, बुरा मर 2500 आदमी मर गए पाचे उसके ऊपर है भगदड़ माच के हर किता चक्र कोई ना हरियाणा की तो कुत्ता की टांग टूट जाना आते जाते कुत्ता की टांग टूट गई। उसने भी चर्चा का विषय बना देंगे विघ्न तार दे। एक व्यक्ति किसी को न्यू कहना कहा जा सत्संग में चलेंगे, हमारे वहां सत्संग बहुत अच्छा होता है और सारी व्यवस्था बिछे बिछाए गदेले हैं ऐसी रजाई में, बिल्कुल ताजी रजाई, ऐसी सर्दी में देसी घी का खान पान सारा फ्री है, और चल वहां चलेंगे सत्संग सुनेंगे। नो नो टाइम को ना एक भगत बताओ था कैसे, मैं एक अपने मित्र गांव का था, उसने कहूं था कहा तो वहां सत्संग में चलेंगे 3 दिन का सत्संग, बोला नो टाइम को ना। इतने में एक व्यक्ति दूसरे से ही बतावा था ना वहां कंपटीशन आ रहा, दूसरे गांव में कंपटीशन हुआ करो वहां, ये गाय को हर अग्नि गाणी हरियाणा के 5-6 पार्टी आ जाया करो, वो उस तो बड कर, वो उस तो बड कर, सुरीली आवाज से गाने गाते इकट्ठे, फिर उनको इनाम दिया जाता, उसमें कंपटीशन बोला। तो वो किसी और ने बतावा था, और जिसको उसने भगत ने कहा था चल सत्संग में, उस तो नाइट गया, उसने आप तो जाकर पूछा अरे किता रहा कंपटीशन कहाँ रहा है, अब वहां फलाने गांव में 5 किलोमीटर दूर वहां जा पहुंचा, रात तो राज राज का धाम फदड़ फदड़ 5 किलोमीटर साइकिल पर गया पैदल मर रहा, और वहां बैठे जाकर जाकर देवी ना बैठे ऐसे रेत के अंदर उड़े मूतें बालक,
और वहां सारी रात दांदरे काट के ऐसी बकवाद सुनकर खुश होकर गया और नौके देख चाल सत्संग बना टाइम को ना कन्ना पे गटाल जा। आत्मा रो रही है कि इस मन ने यदि कोई अच्छी साधना पर लगाने की बात करता है तो यूं सुनता नहीं बहरा हो जाए और उल्टी साधना इसने बता दे खुश होकर करता है। पेट पलनिया चलते देखे नु ये खट्टू श्याम जी पर जावा या कोई और जाते हम भी जाते थे साला सर तो वहां देखे नु लेट लेट के कौन ही फूट जा बेचारे की और उनको इबनो कह देने कहा जा वहां सत्संग में ना उड़ा के दरिया है वहां क्या रखा है उसके लिए बता रहे हैं। अब आत्मा रो रही है कि मैं तो दे दी बालम बहरे नु इस मन रूपी पति के इस बहरे के साथ मेरा मेल कर दिया संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बुझा समझ गहरे नु आम आदमी कोई बता दे वह साधना शुरू कर दे और इस यथार्थ ज्ञान को प्रमाण के सहित बताया जाता कि तीसने ना माने और मर्दों से ती प्रीत लगावे जैसे को बाबा जी मर गया गांव में 100 साल पहले ऊड़ा माथा टेकन जाएंगे मारे समाज की पूजा है और जिंदे संत ना पूछे आगे पूछते। अब जैसे कोई वैद्य था और बहुत अच्छा वैद्य था नब्ज पकड़ के दवाई देता था स्वस्थ कर देता था अब वो मर गया मृत्यु होगी उसकी यादगार बना दी एक प्रतिमा बना दी। अब कोई उस मर्द के पास वैद्य के पास मत्था टेक कर जाकर मन ठीक कर दे स्वस्थ कर दे अब नहीं कर सकता वह मूर्ति कुछ नहीं कर सकती ऐसा ही वैद्य खोजना पड़ेगा कहां मिले फिर वो नब्ज देख के वो दवाई दे तब रोग कटे। तो ऐसे ही संत ढूंढने पड़ेंगे उन वो संत बतावेंगे नो कहे उन संतों की तो मानते नहीं मुर्दों से ती प्रीत लगावे नहीं जाने सतगुरु मेरे नु उस संत को नहीं समझता जो हर तरह से हर महरम से परिचित है जो तत्वदर्शी है यानी पूरा खोजी है उसका श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे और देखत ना उस चेहरे सब ने निराकार निराकार पगाटा जोड़ रखे है विष्णु जी की पूजा करे मूर्ति बना रहे हर कोई नो कह कैसे भक्ति करता ध्यान मेडिटेशन करता हूं भगवान कैसा है वो तो निराकार है पर विष्णु जी की किस लिए पूजा करता जो भगवान विष्णु भगवान नहीं है। ऐसी बालका वाली छुरी थी हमारी बिना ज्ञान के कहते हैं श्वेत छतर उस परम पिता के ऊपर छतर है जैसे इस दास के ऊपर इन भगतान बना रखे है ये तो अपना आर्टिफिशियल है श्वेत छतर और सिर मुकुट सिर पे मुकुट है और देखत ना उस चेहरे में साकार है वो परमात्मा सतलोक के अंदर ये निराकार निराकार बताने में कैखे का पता नहीं इनका कोई अनुभव नहीं है। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज देखत ना उस चेहरे ऊंची थलियां खेती बो ये भूल रहे नजडेरे यानी कितना क्यों गरीबदास साहिब जी किसान थे और किसान लोग उनके आसपास आ जाया करते थे उनको उसी ढंग से यानी आम व्यक्ति को ही उन्होंने ज्ञान दिया है लेकिन उस समय जब ये बैठे हैं तो ऐसे व्यक्तियों को भी उसी तरीके से समझाने की चेष्टा की है जिससे वो समझ सकते हैं कि भी तुम ऊंची थलियां पर जाना पानी की व्यवस्था वर्षा हो जा तो बीज डाला जा सकता है अगर वर्षा ना हो तो बीज भी खराब उसमें डाला हुआ ऊंचे थलों पर और एक डहर होती है समतल जमीन होती थी पहले साधन वर्षा का ही होता था सिंचाई का तो वर्षा थलियों पर वर्षा हुई भी उस डहर में आके जल रुकता था और जिसमें ज्यादा जल वर्षा का रुक जाता था उसमें ज्यादा उपज होती थी और वो डहर उपजाऊ जमीन होती थी। थलियों पर तो मनमाने एक मण भी ना हो एक एकड़ में वो तो एक दो मण हो जा जब वर्षा ठीक होती रहे तो और डहर में हो जा 40 मण 50 मण एक एकड़ में। तो कहते हैं तुम ऊंची थलियां यानी आन उपासना अन्य देवताओं की जो पूजा है वो ऊंची थली है और सतपुरुष परमात्मा की पूजा वो डहर है उपजाऊ स्थान है उसको तुम भूल गए जो घना धन दे यानी जिससे आपको अधिक लाभ। ऊंची थलियां खेती वो है ये भूल गए नज डहरे नु ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नु जैसे कोई व्यक्ति
कोर्ट में मिल रहा है, किसी मित्र अपना कोई रिश्तेदार मिल जाता है कचहरियों में, और दोनों आत्मा हाथ में लाग रहे हैं, और ठीक है रिश्तेदार हकामोज हो रही है, कोर्ट में मौज का के महादुखी व्यक्ति जा रहे कोर्ट में गिग्गी बंदी रहे कदे आज गवाह जार आज वो फलाना ना आवर कदे न्यू हो जा, और वहां भी नौका मौज हो रही है, कहते तुम कहन तक सीमित हो मौज की, अड़ा मौज नाम की चीज नहीं, आपकी तो ऐसी स्थिति है, कबीर ये माया अटपटी, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आने अड़ी, किस किस ने समझाऊं या कुए भांग पड़ी। जैसे किसी ने एक मण भांग घोट कर कुएं में डाल दियो और उस कुएं के जलने से दूसरे आदमी पी ले, पीते ही उनकी एक जैसी शकल एक्टिंग है, ऐसे लड़खड़ा कर चलना और एंड मेंड बोलना, कहते इस काल ने इस त्रिगुणमयी माया की भांग गेर दी 21 ब्रह्मांड में, और इसने ही पी कर तुम टीटी बने फिरो आज, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। जैसे कोई शराब पिए पड़ा था दोपहर से जून के महीने में, हरियाणा राजस्थान का स्थान, और धूप में पड़ा और पसीना पसीना जागा रे हैं, और सारा रेत में बुरा हो रहा, और उसको कोई उठाता है कि उठ भाई तू यहां दुखी हो रहा है और गर्मी बहुत सता रही है, चल तुझे वृक्ष के नीचे बैठाता हूं, जोड़ दे मौज आ रही है एक तरफ। तो आज हम इस स्थिति में, इस काल के लोक में, यहां पर किसी को सुख नाम की चीज नहीं, चाहे प्रधानमंत्री बन रहा है, एक पल की भी चैन नहीं है, चाहे सारी पृथ्वी का राजा है, यदि किसी को सुख भी है तो इस परमात्मा की भक्ति सत भक्ति से यहां भी सुख है, और फिर परम सुख स्थान को प्राप्ति होगी। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू, इस काल के लोक में इतना कष्ट उठा रहे हो, इससे मौज मान रहे हो तुम, गरीब दासिये वक्त जाते है रोगे इस पैरे। ये मनुष्य जीवन एक बार आते छूट गया ना आपके, कहते कुत्ते की तरह रोया करो ऊपर न मुंह करके, गरीब दास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे नू, ये मनुष्य जीवन ऐसे बर्बाद हो गया, सत भक्ति बनी नहीं, परम संत मिले नहीं, तो रोया करोगे इस समय को याद करके। फिर परमात्मा कहते हैं फिर क्या बनेगा, आछे दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के एक रह जो चिड़िया चुकी खेत। जिस लोक में हम रह रहे हैं यह लोक काल भगवान का है, और हम अपनी अज्ञानता के कारण इस काल के साथ इस लोक में आगे हैं, जो हमारे पुण्य थे वो इसने समाप्त करवा दिए, जो हमारी पूंजी हम सतलोक से साथ लेकर आए थे वो स्वर्ग के अंदर इसने विनाश करा दिए, उसके बाद इसने हमें यहाँ पृथ्वी पर पटक दिया, ये एक कैद है एक जेल है, यहाँ पर रोके रखने के विधि तरीके इसके भिन्न हैं, और यहाँ इस काल के जेल की तीन जेलर बना रखे हैं इस काल में, जो हमें यहाँ व्यवस्थित रखते हैं, इनके अपने अपने एक एक विभाग बांट रखे, जिस कारण से हम यहाँ इतने अज्ञानी हो गए, हमें अपने मूल स्थान की याद भी नहीं रही। इस काल भगवान ने जिसको यहाँ ब्रह्म बोला जाता है, ब्रह्म कहा जाता है, इस ब्रह्म ने कोरा अज्ञान प्रकाश करवा दिया, अज्ञान का प्रचार करवा दिया, यथार्थ ज्ञान को छुपा दिया, परमेश्वर पूर्ण परमात्मा ने इस काल को पांच वेद दिए थे, पांचवा वेद सूक्ष्म वेद है, उसको इसने समाप्त करा दिया, छुपा दिया, नष्ट कर दिया, और चार वेद यहां प्रचार करवा दिए, वो चार वेद हैं ऋग्वेद यजुर्वेद श्यामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में केवल ब्रह्म तत्व की ही साधना का वर्णन है,
और जानकारी पूर्ण परमात्मा की है, जो समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, जो सबका मालिक है, जिसने सारी सृष्टि रची है। उस परमात्मा के विषय में भी अत्यधिक जानकारी है, लेकिन वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि इन चार वेदों में केवल ब्रह्म तक की है। तो इससे सिद्ध है कि ये चारों वेद इनकम्प्लीट हैं, अधूरे हैं। ये अधूरा ज्ञान हमारे को दे दिया और हम इस अधूरे ज्ञान को संपूर्ण ज्ञान मान के, और जैसा भी ऋषि महर्षियों ने निष्कर्ष निकाला अपने ही अनुभव से, उसी को आज तक हम सुनते सुनाते रहे। वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा स्वयं ही चलकर आते हैं और अपने यथार्थ ज्ञान को वो स्वयं ही अपनी प्यारी आत्माओं को बताते हैं। फिर वो पुण्यात्मा अन्य अपने साथियों को, भाई बहनों को वो यथार्थ ज्ञान कराते हैं। लेकिन काल के दूत, काल के द्वारा प्रेरित संत ऋषि महर्षि मंडलेश्वर आचार्य, ये उस भ्रमित ज्ञान से अधिक भ्रमित रखते हैं और वो प्रचारक ज्यादा होते हैं। परमात्मा से परिचित व्यक्ति, पुण्यात्माएं बहुत सीमित होती हैं। तो जिस कारण से वो यथार्थ ज्ञान जन साधारण तक नहीं पहुंच पाया, उसका मूल कारण ये रहा कि पहले सभी अशिक्षित हुआ करते थे। प्रत्येक युग में एक विधान बना दिया था इन ऋषियों ने, अपने आप ही एक विधान बना दिया कि ब्राह्मणों के बच्चे विद्या ग्रहण करेंगे, वो सदग्रंथों को समझेंगे और फिर उनका प्रचार, परमात्मा की महिमा अन्य जनता को वो बताया करेंगे। तो इस बात से सभी सहमत हो गए भी ठीक है, हम व्यवसाय करते हैं, अपना रोजगार में लगे रहते हैं, हमें इतना समय नहीं है पढ़ने का, अच्छी बात है। और जो परमात्मा की कथा प्रचार किया करते थे उनको वो अन्य वर्ण, तीन वर्ण, चार वर्ण बनाए थे, एक ब्राह्मण, वैश्य, अक्षत्री और शूद्र। ब्राह्मण वर्ग केवल शिक्षा ग्रहण करता था, तीन वर्ण उन्हीं ब्राह्मण वर्ण से सुने हुए ज्ञान को ही स्वीकार करते थे और उनको दक्षिणा दिया करते थे। ये रूटीन अभी तक चलता रहा। अब वो जितने भी ऋषि थे, ब्राह्मण थे, गुरु थे, वो तत्व ज्ञानहीन थे, क्योंकि ज्ञान कहां से प्रारंभ हुआ? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी के वंशज ब्राह्मण कहलाते हैं, वो ऋषि महर्षि कहलाए। और ब्रह्मा जी को स्वयं ज्ञान नहीं, ब्रह्मा जी स्वयं वेदों से अपरिचित, क्योंकि वेद, चारों वेद इनकम्प्लीट नॉलेज रखते हैं, इनकम्प्लीट ज्ञान है। और ब्रह्मा जी ने उन्हीं वेदों को पढ़ा और समझा जो इनकम्प्लीट अधूरा ज्ञान है, और साथ में हठ योग भी करते रहे। तो ब्रह्मा जी से विष्णु जी और ब्रह्मा जी से ही शिव जी ने अध्यात्म ज्ञान को ग्रहण किया। अपुण आत्मा परमेश्वर की वाणी में आता है कि तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। सत्संगी का अर्थ होता है जिसके पास सच्चा ज्ञान हो, वो सत का साथी, और जिसके पास सत ज्ञान नहीं है वो अधूरा ज्ञान है, तो वो सत का साथी यानी सत्संग नहीं रखता। परमात्मा कबीर जी ने अपनी वाणी बताया, सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी बंधे सभी काल की डोरी। सुर देवता, नर आम व्यक्ति, और मुनि जन ये ऋषि महर्षि, कहते ये सभी काल की डोरी से बंधे हुए हैं, ये काल के ज्ञान से परिचित हैं, ये ब्रह्म को सुप्रीम पावर मानकर ओम नाम के जाप का सिमरन ध्यान करते रहे। और कुछ एक ऐसे रहे जो केवल अपने निष्कर्ष से, अब ज्ञान कैसे बिगड़ा, वेदों में केवल ओम नाम है और एक परमात्मा की साधना की तरफ संकेत है, निर्देश है, फाइनल है कि एक ही भगवान है जो सर्वशक्तिमान है, उसी की पूजा से पूर्ण मोक्ष होगा और वही पूजा के योग्य है, वही मोक्षदायक है, पाप कर्म नाशक है। साथ में ये भी लिखा है कि ओम नाम जो है ये
सिमरन करना चाहिए, ये ब्रह्म का जाप है। तो ऋषि महर्षि उसको ठीक से ना समझकर ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मानकर इस ब्रह्म को कहीं परब्रह्म बोलते हैं, कभी इसको कहीं पूर्ण ब्रह्म बोलते हैं, कहीं अक्षर ब्रह्म बोलते हैं, लेकिन ये ओम मंत्र केवल ब्रह्म का है। जिस कारण से उन्होंने साधनाएं करते हुए भी कुछ उपलब्धि नहीं हुई। फिर जब ओम नाम के जाप से हठ योग करने से प्रभु प्राप्ति नहीं हुई तो फिर विचलित हो गए। अपने अनुभव से बता दिया कि परमात्मा निराकार है, जबकि वेदों में और सदग्रंथों में और जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार हुआ उन्होंने बताया कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश है, लेकिन उनका तेज, उनके शरीर की जो चमक है वो असाधारण है, लेकिन है मनुष्य जैसा ही। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार फिर ये उस साधना को छोड़कर अन्य साधनाएं करने लगे और जिसको जैसा भी अनुभव हुआ उसी को आधार मानकर उन्होंने अपना कोई इष्ट चुनकर साधनाएं करते रहे और काल के जाल में फंसे रहे।

0: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
1: प्रोग्राम का ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहता है या तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लेनी चाहते हो तो इस दी जानकारी लई कॉल करो bobby.dodd@403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130-4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th Street साउथ ईस्ट कैलगरी।
3: पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
4: अब आपको थोड़ी सी झलक देंगे श्रीमद् देवी भागवत से। यह श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इस पर आपको दिखाते हैं विष्णु जी को कितना ज्ञान था, ब्रह्मा जी को कितना ज्ञान था। प्रश्न 28 28 पर पहला सकल, ये नारद जी और व्यास जी जो इन पुराणों के राइटर हैं व्यास जी, ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं। नारद जी से व्यास जी पूछ रहे हैं, नारद जी बता रहे हैं। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक ही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था, यानी विष्णु जी से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी है। अब नारद जी के ज्ञान का भी पता लग जाएगा इसमें, ये विष्णु जी को देवा अधिदेव यानी भगवानों के भगवान जगत के स्वामी कह रहे हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, चार भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु हैं। विष्णु जी को जगत गुरु कह रहे हैं कुन नारद जी, एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है, आप किस भगवान की पूजा कर रहे हो? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हो। ब्रह्मा जी के विनित वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और शंकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। सुवर्त, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूं, अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। अब ये क्या बता रहे हैं विष्णु जी के, मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं और फिर थोड़ा बहुत समय मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय व्यतीत करता हूं, फिर उसके बाद तप करके बैटरी चार्ज कर लेता है, ये कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेता है विष्णु जी, उस सिद्धियों को फिर समाप्त कर देता है, राक्षसों को मार कर पाप इकट्ठे कर देता है, मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। यहां बताया मुझे विष्णु जी कह रहे, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है दुर्गा के, उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा का, उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में यानी मेरे धार्मिक नॉलेज में, स्पिरिचुअल नॉलेज में, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में, मुझे जितना ज्ञान है मेरी जानकारी में, इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अपने आत्मा ब्रह्मा विष्णु और नारद और व्यास जी के ज्ञान का ये पर्दा उठ गया कि ना तो ब्रह्मा जी ने कह कहेगा पता भक्ति के बारे में, क्योंकि वो विष्णु जी को सर्वेश्वर महेश्वर सब देवों के देव जगत के स्वामी सबका मालिक बताकर उसकी उपमा कर रहे हैं, और विष्णु जी ने अपना भेद दे दिया कि मैं दुर्गा की पूजा करता हूं या घोर तप करता रहता हूं, घोर तप करके कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, उन सिद्धियों के आधार से फिर राक्षसों का हनन करता है, हत्या करता है और कहता है मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं जानता। दुर्गा मेरा इष्ट है, ये फाइनल गॉड है, मेरा अंतिम देवता है। अब पुण्य आत्माओं, परमात्मा आज नहीं 600 वर्ष पहले कहा करते हैं, सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी बंदे सभी काल की डोरी। ये सभी काल के बंधे हुए हैं, ये काल के से बाहर नहीं जा सकते, इनकी साधनाएं व्यर्थ है, इस काल के जाल में फंसे रहने की है। अब दुर्गा कहती है कि एक ब्रह्म की साधना करो, मेरी पूजा भी छोड़ दो। इसे सिद्ध है कि ना तो ब्रह्मा न ज्ञान ना विष्णु जी को। आगे देखिए 562 पृष्ठ पर श्री संक्षिप्त देवी भागवत में सातवां स्कंद 562 पृष्ठ पे ये दुर्गा हिमालय को ज्ञान दे रही है। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, यानी ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, अब ये तो पहले तो यहां तक तो अपने विषय बता रही, फिर कहती है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी हैं, वही यह अक्सर ब्रह्म है। अब देखो यहां से कहन लगी थी या ब्रह्म के बारे में बताऊंगी, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन है, और ये क्या करिए अक्सर ब्रह्म है, और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, और वही सबके मन है, वही परम सत्य है और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो और मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो। भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। अब क्या बताते हैं, महिमा तो गा रही है अक्षर ब्रह्म की और नाम बता रही है ब्रह्म का। परवण ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अभी सब उवा बाई बांध रहे हैं, यहां अक्षर ब्रह्म कह रही है, यहां केवल ब्रह्म का ओम नाम है बस। आगे देखो उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी बातों को छोड़ दे, यानी मेरी पूजा भी छोड़ दो, दुर्गा कह रही है, और केवल उसी परमात्मा को जानो जिसका ओम नाम है। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है, संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त कराने का ही सुलभ साधन है। जिस प्रकार इस आत्मा का ब्रह्म के जप के साथ ध्यान करो, ओम के, यानी उस आत्मा ब्रह्म का, ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं, इस आत्मा का यानी ब्रह्म का ओम के जप के साथ ध्यान करो। अब ये गुण तो गा रही है अक्षर ब्रह्म के और मंत्र बता रही है ओम ब्रह्म का, यह स्पष्ट कर रही है कि इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, यानी ओम नाम के जाप से। ये कह रही है कि उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहां रहता है, वह सबका आत्मा, वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। यह ब्रह्म लोक में रहता है यो ब्रह्म, और ओम नाम के जाप से उसके पास पहुंच जाओगे ब्रह्म लोक में। ये दुर्गा का ज्ञान है जो हिमालय को बता रही है, और विष्णु भगवान कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी देवता ने जानता ही नहीं, दुर्गा कह रही है कि उस कह रही है ब्रह्म का जाप करो, उसका ओम नाम है, नथिंग एल्स। उससे क्या होगा कि ब्रह्म लोक में चले जाओगे। गीता जी दयान मराठ के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति में है, पुनरावर्ती यानी बार बार आने और जाने का जो चक्कर है। ब्रह्म लोक में गए प्राणी भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते, उनकी भी जन्म और मृत्यु होती रहती है। पुण्यात्मा गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में कल आपको दिखाया, उसमें लिखा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसकी ये पहचान है कि संसार रूपी वृक्ष के वो सभी अंगों को भिन्न भिन्न प्रकार से विस्तार से बताएगा, वो तत्वदर्शी संत होगा। उसके बाद फिर उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, अर्थात उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। गीता ज्ञान दाता कह रहा है, गीता ज्ञान दाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन को सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तुम परम शांति को, परम शांति जीव को परम शांति उस समय होगी जब इसका जन्म और मृत्यु का रोग कट जाएगा, और सतलोक के अंदर जाने के बाद वहां कोई कष्ट नहीं, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, और वहां जाकर के जरा और मरण दोनों नष्ट, युवा शरीर रहेगा और कभी मृत्यु नहीं होगी, राग द्वेष नहीं, बाहि बंटवारा नहीं, नेक आत्माएं होती हैं जो आपस में वहां झगड़ा भी नहीं होता, सब भरे भंडार है भगवान के दरबार में, कोई काम नहीं। गीता जी माता है कि नैष्कर्मे जो सिद्धि है, उपलब्धि है, वो सतलोक में ही प्राप्त होगी, और उसकी साधना यहाँ 3 मंत्र के जाप से। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, प्रभु आपने अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जिस तत्वर्म के बारे में बताया है, कहा है कि उसके जानने के उपरांत तो प्राणी केवल जरा और मरण के मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करता है।

ठीक है, ओम और तत्व सांकेतिक शब्द मिलकर ये सतनाम बनता है, सच्चा नाम बनता है सतनाम। सत शब्द जो सत है वो सार नाम है, वो सार नाम मिलकर तीन मंत्र का यू जाप इकट्ठा ही हो जाता है। तो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परमेश्वर की शरण में जाने के लिए, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने के लिए, जरा मरण से छुटकारा पाने के लिए, तत्वदर्शी संत द्वारा बताए गए उस तीन मंत्र के जाप का सिमरन करे, रटना लावे, तब उसका पूर्ण मोक्ष होगा। यानी व्यास जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी श्रेष्ठ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि विष्णु जी सर्वशक्तिमान सबसे उत्तम, विष्णु जी कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर कोई देवता भगवान नहीं जानता, दुर्गा कह रही है ब्रह्म फाइनल गॉड, उसका ओम नाम ब्रह्म लोक में रहता है। और वेद और गीता जी, वेदों का सारांश है गीता जी, श्रीमद भगवत गीता वेदों का सारांश है, और उसमें बताया कि ओम नाम है ब्रह्म का, और ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। आठवें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी गए हुए वापस जन्म मृत्यु को आते हैं, और ब्रह्म कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो जब पूर्ण मोक्ष चाहिए तय। उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताएंगे, ना वेदों में वर्णित, ना गीता जी वर्णित, ना किसी अन्य ऋषि के पास युग्ञान में, और वो तत्वदर्शी संत स्वयं परमात्मा ही आते हैं। सतयुग के ऋषियों के ज्ञान, और वो ऋषि जी क्या ज्ञान रखते थे देखिएगा 414 पे। अब प्रसंग चल रहा है कि सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी बंदे सभी काल की डोरी, ये है छठा स्कंध संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे। जन्मे जय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, व्यास जी से पूछ रहे हैं, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। अब व्यास जी के ज्ञान की पोल खुल लगी, वो नो कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूरे ज्ञाता थे, और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी, वे भी दुर्गा की पूजा किया करते थे और वेद के ज्ञाता थे। वेदों में और गीता जी में कितने भी दुर्गा की पूजा का प्रावधान नहीं है, भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायत रहता था। धर्म की यही सतीची त्रेता में रही, परंतु कुछ हरास हो गया था, सतयुग की जो सतीची थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे ईव कलयुग के ब्राह्मण माने जाते हैं। ओ तेरा गजब हो, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण हो गया, बन गया है। अब पुण्य आत्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले यह संघर्ष किया था, इस ज्ञान को यहां अपना एक बीज रूप में छोड़ गए थे, यथार्थ ज्ञान को, उस समय के इन नकली ब्राह्मणों ने, इन राक्षस रूपी ब्राह्मणों ने, दास नहीं कह रहा, देवी भागवत बता रही है कि कलयुग के ब्राह्मण सतयुग त्रेता द्वापर के राक्षसों के समान है, और उन्होंने कैसा जुल्म किया परमात्मा के साथ, कबीर जी के साथ, जो हमारे को यथार्थ ज्ञान देने स्वयं भगवान आए थे, और उस ज्ञान को इन्होंने हम तक नहीं आने दिया। आप जी ने कल गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में पढ़ा था कि जो अन्य साधनाएं जो करते हैं, कोई ऐसी करता है, कोई कैसे कर रहा है, कोई कुछ करता है, आध्यात्मिक मार्ग में जो वो लगे हुए हैं, वो अपनी अपनी क्रियाओं को, अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाश करने वाली जानकर कर रहे हैं, और उनको ये पता लग जाएगी पाप नाशक नहीं है तो उसी दिन छोड़ देंगे वो। तो उस तरह उस सचिदानंद घन ब्रह्म ने जो स्वयं परमात्मा आए थे, स्वयं परमात्मा आते हैं और वो जो ज्ञान देते हैं, वो फिर अपनी मुखारविंद से उच्चारण करते हैं वो यथार्थ ज्ञान को, और उस ज्ञान के अंदर बहुत विस्तार के साथ कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, वो विशेष विस्तार से बताई गई है। उस ज्ञान को
चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जा।

समझ, फिर वो बताओगे तेरे को यथार्थ ज्ञान। अपने आत्माओं, अब काल ने ये दूत भेजे थे इस बोली आत्माओं श्रद्धालुओं को मिसगाइड करने के लिए। उसको पता था कि कलयुग में परमात्मा ने कहा है कि हम अपना ज्ञान दे करके अपनी प्यारी आत्माओं को सतलोक ले जाएंगे। काल ने कहा था कि इस कलयुग में ऐसे कर दूंगा इनको, कोई भक्ति की योग्य नहीं रहेंगे, इतना ज्ञान ठोक दूंगा कलयुग के अंदर, इतने विभाजन कर दूंगा मानव के। अब 36 तो मजो बना दिए और ना जाने कितने नकली पंथ चला दिए, लेकिन परमात्मा को पता था कि वो सभी पंथों की अज्ञान की हम पोल खोल देंगे, और जब जिसकी पिटारी में जिसकी बोरी में जिसका माल होगा वो खुलकर सामने आ जाएगा, वो बढ़िया माल साथ में होगा, डेरी लगा दी जाएगी, तो अपने आप ही समझ जाएंगे कि यो माल अच्छा है यो गलत है, ग्रहण कर लेंगे। और इस युग में शिक्षा देना परमात्मा कबीर जी के लिए अनिवार्य था, और शिक्षा का सबसे बड़ा दुर्गुण है कि इसमें ये बेईमान बनाती है जीव को, विकारों का घर बना देती है। सतयुग त्रेता द्वापर में ये एक अवगुण एक ही वर्ग में था, ब्राह्मण वर्ग में, और वो इतने छल कपट झूठ कपट के सहारा लेकर के अपना जीवन बर्बाद करते रहे, और साथ में अन्य यजमानों को भी मिसगाइड करते रहे अपने लालच और लोभ में। वो विद्वान होने करके एक दूसरे की टांग भी खींचते थे, अपने आप को विद्वान सिद्ध करने के लिए चतुरता प्रयोग करते थे। परमात्मा कहते हैं कि इस विद्या में अवगुण बहुत है, लेकिन इसमें एक ही गुण है, इसमें एक ही गुण परमात्मा ने हमारे लिए रखा है कि हम सदग्रंथों को स्वयं पढ़ सकेंगे और उनके गूढ़ रहस्यों को स्वयं समझकर भगवान पहचान लेंगे। और जब हम भगवान से परिचित हो जाएंगे फिर हमारे लिए शिक्षा भी हानिकारक नहीं रहेगी, माया की दौड़ नहीं रहेगी। भगवान हमें बगैर दो नंबर का काम करे ही बहुत ज्यादा धन देते रहेंगे, क्योंकि हमारी भक्ति मार्ग ऐसा है, तो फिर हमने किसी प्रकार का कोई विकारकरण की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो पुण्यात्माओं, तो वेद बताते हैं कि वो परमात्मा कैसी लीला करता है। कबीर परमेश्वर है, वो कबीर देव है, हम उसको कबीर साहब कहे हैं, कबीर देव कहो चाहे साहब कहो, राम कहो भगवान कहो, वेदों में उसे कबीर देव कहा है। कहीं पर कवि सीधा शब्द भी लिखा है तो वो कवि काव्यकार के लिए होता है, और एक भाषा भाषा का अंतर होता है। जैसे फारसी भाषा में कबीरन लिखते हैं कबीरन, या कबीरा लिखते हैं या खबीरा लिख देते हैं, तो वो परमात्मा के उस यथार्थ नाम की तरफ ही संकेत है। ऐसे ही कबीर देव वेदों में लिखा है। तो वो कबीर परमात्मा क्या लीला करता है ये तो वेद बता रहे हैं, और वो 600 वर्ष पहले ऐसी लीलाएं करके चले गए, सतयुग में की, त्रेता में की, द्वापर में ये लीलाएं की, ये ज्ञान दिया, लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर का दिया हुआ ज्ञान नहीं रहा। अब कलयुग में फिर आकर परमात्मा ने दिया, वो ज्ञान समाप्त करवा देते थे ये नकली ऋषि, कबीर जी के ज्ञान को नष्ट करा देते रहे सतयुग त्रेता द्वापर तक। अब कलयुग में ये हमारे पास उपलब्ध है, कुछ दिनों में इसका भी ये विनाश करा देते। तो 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने जो लीलाएं की कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए, एक धर्मदास नाम के महापुरुष पुण्यात्मा थी, भगवान के लिए भटक रहे थे, तीर्थ करते फिर रहे थे, श्री कृष्ण जी के पुजारी थे, उनको मिले यथार्थ ज्ञान दिया, फिर धर्मदास जी ने उसके बाद वो सत साधना की। वही परमात्मा दादू साहेब जी को मिले, राजस्थान के अंदर दादू साहेब जी थे जयपुर के पास, वहां परमात्मा आए, सतलोक से चलकर आए, 7 वर्ष के दादू जी बालक थे, बच्चों में खेल रहे थे, वहां उनको एक बूढ़ा बाबा के रूप में मिले, सतलोक लेकर गए उसकी आत्मा को। पीछे से वो 3 दिन 3 रात तक अचेत पड़े रहे दादू जी का शरीर, 3रे दिन वापस उनकी आत्मा आई तो उन्होंने कबीर जी की कलम तोड़ महिमा गाई। ऐसे गरीबदास साहेब जी छुड़ानी गांव, जिला झज्जर वर्तमान में हरियाणा, तो वहां परमात्मा सह शरीर आए,
सतलोक से चलकर आए एक जिंदा महात्मा, बूढ़ा बाबा का हृदय एक जिंदा महात्मा के रूप में, जिंदा संत के रूप में। मुसलमान हम होते जिंदा, जैसे कोई अलग अलग वेशभूषा होती है उनको अलग अलग भेख बोलते हैं, जिंदा महात्मा होते हैं। एक ओवर कोट सा पहनते हैं काला सा घुटनों के नीचे तक का, एक अंडरवियर पहनते हैं, सिर पर एक टोप पहनते हैं इस पर, और दाढ़ी और सिर के बाल बड़े बड़े होते हैं। इस वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। तो परमात्मा जिंदा के वेशभूषा में, गरीब दास जी 10 वर्ष के थे, गौवे चरा रहे थे खेतों में, और भी बहुत से पाली गवाले थे, वहां गरीबदास जी आपको आकर मिले, सतलोक लेकर गए, वहां उन्होंने सब ब्रह्मंडों की जानकारी दी, अपनी यथार्थता बताई, वहां सतलोक में दर्शन दिखाए, गरीबदास जी के शव की अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर दी थी, चिता पर रख दिया गया था मृत जानकर, इतने में आत्मा वापस भेज दी परमात्मा ने। खड़े हो गए गरीबदास जी, फिर ये वाणी बोलन लग गए जो परमेश्वर ने उनके हृदय में फीड कर दी थी कबीर जी ने। तो वही वाणी आज परमात्मा कबीर जी की महिमा से ओतप्रोत है, गरीबदास जी के द्वारा लिखी गई, बोली गई, और एक गोपाल दास नाम के एक दादूपंथी महात्मा संत के द्वारा वह लिखी गई, आज हमारे पास उपलब्ध है। तो वो परमात्मा ऐसी लीलाएं करते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, अपना यथार्थ ज्ञान बताते हैं।

0: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
1: ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੇਅਰਿੰਗ ਹੋਮ ਹੈਲਥ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੇਅਰਿੰਗ ਹੋਮ ਹੈਲਥ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 124, 4774, ਵੈਸਟ ਵਿੰਸ ਡਰਾਈਵ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ, ਕੈਲਗਰੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕੇਅਰਿੰਗ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 403-605-6300 ਤੇ, ਯਾਨੀ 403-605-6300 ਤੇ।

पेश कर रहे हैं। एक सवाली ने आके सवाल किया हकत मौला अली सरकार ने कि सरकार मैंने रोटी दे, मैं बहुत दिनों तो भुखा हूं। जनाब मौला अली सरकार दे एक गुलाम सन जिन्हों का नाम कंबर से। मौला अली सरकार ने कंबर नू फरमाया कि सवाली नू रोटी दियो। कंबर कहता है कि सरकार रोटी संदूक है जी। सरकार मौला अली कहते हैं कि संदूक ही दे दियो। कंबर कहता है कि जनाब संदूक ऊंट से है। मौला अली सरकार कहते हैं ऊंट ही दे दियो। कंबर कहता है कि जनाब ऊंट सौ ऊंटा की कतार है। मौला अली सरकार फरमाते हैं सौ ऊंटा की कतार ही दे दियो। कंबर ने जदों ये गल सुनी वो मौला अली सरकार के कोल चला गया। मौला अली सरकार फरमाते हैं कि तू मेरे को की लेन आया है। कंबर कहता है सरकार के मैं ये सोचा थी कि मैंने भी ना सवाली नू दे दे। जिस वक्त सवाली वो ऊंटा की कतार लेके तुर पिया, राज किसी ने पूछा कि इन्ने ऊंट कितों लेके आया है। ते वो अगू मंगता की कहता है सुनने वाले लोगों, मैं एसएम सादिक का कलाम पेश कर रहा।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue, South East Calgary, near Stanford.

सजना दी जे उम्र बीत दी जावे पज पापा रोवा तेन तरस रता ना आवे दे दे मौत भी छोड़े नालो मेरी मुश्किल हल हो जावे ओ यार फरी तो पैर मैं चुम्मा

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन बार्स वॉशरूम वैनिटी क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फेशिया स्मार्ट रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैनी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन बार्स वॉशरूम वैनिटी क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल से खोजी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फेशिया स्मार्ट रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी
2: सदा रहे

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

0: अगले 24 घंटे सत्तो दिन चलने वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिनाज स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह दी जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: हो जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, North East, Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है यूनिट नंबर 2121 51 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।

कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल से खोजी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डीजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है, यूनिट नंबर 210 2332 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैंड लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानने लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, North East, Calgary।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानने लई आज ही अपने घरां ते कारां दी रेडियो नूं पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue, Southeast Calgary, near

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामां संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसीं अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसीं रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंकुएट हाल दा पता है, यूनिट नंबर 2850, होपवेल प्लेस, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

पिता माता तत् महत। दिवस रात दोय दाई दाया खेले सग जगत, चंगी आईया बुरे आईया वाचे धर्म हदू, करमी अपो अपनी के ने रह के दूर।

ಶುಟ್ಟಿ ನಾ ವಾಹಿಗುರು ಜೀ ಕಾ ಖಾಲ್ಸಾ ವಾಹಿಗುರು ಜೀ ಕೀ ಫತಿಹ।

दर्शन प्यासी दिन सुरात, चितवो अन दिन नीत, खोल कपट गुर मिलिया। हाँ नानक

जीवा गुर तेरा पुराना कर्म होए प्रभ मेरा हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखे बिखखाई माया मोह परम पै पूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई

ਓਵੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।

0: मस्त जब बोलिया
1: ओंकार सतनाम करता पुरख निरपाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद असमला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे ढूंढे असराज की धुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने देवहाड़ी सदवा जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार एते चानण होंदे गुरबिन घोर अंधार महला पहला
0: नानक गुरु ना चितनी मन अपने सुची छुटे तिल बुआड़ ज्यों सुंजाई अंदर खेत हितै अंदर छुटिया काओ नानक सोना फलिए फुलिए बपड़े ਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਪੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਜਿਓ।

0: जीवन मुक्त सुवकिए मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जग दुखर तरिया
1: सलोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदा कह लख करोड़ सच्चा सब तान सच्चा सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच प्यायन सच जो मर जमे सो कच ने कच महला पहला
0: बड़ी बड़ियाई जा बड़ा नाऊ बड़ी बड़ियाई जा सच ने आऊ बड़ी बड़ियाई जाने चल थाऊ बड़ी बड़ियाई जाणिया लाओ बड़ी बड़ियाई बुझस पाओ बड़ी बड़ियाई जा पुछन दात बड़ी बड़ियाई जा प्या नानकार नकथनी जा किता करना सर्व जाय महला दूजा
1: जग सच्चा की है कोठड़ी सच्चे का विचवास एक ना हुक्म समाए ले एक ना हुक्मे करे विनाश एक ना पहाड़े कड ले एक ना माया विच निवास ए पे आख ना जा पई जे किसे आने रास नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे पर गास पौड़े नानक जी पाए
0: लिखना वे धर्म बहाले ते सच सच निबड़े चुन वख कटे ज जुमालिया था न पैन कूड़ियार मुह काल दो चक चल नर ते सजन गए हार गए सिठ गुण बालिया लिखना वे धर्म बहालिया

विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नाग फिरे जलत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड़े विडानी।

0: जन्म गवाया, जन्म गवाया, जन्म गवाया।
1: जोड़ी अपने पोह पोह के बस बन भोर सिदाया, बड़ा हुआ दुनी दल कर संगल कब चलाया, आगे करने की रत बची है, पहले खाकर समझाया, हाँ नौ भी पोदी उन्हें क्या रुआया, मनंदे जन्म गवाया, मनंदे जन्म गवाया।

0: नात्र निरंकार है, न लिए नरक न जाइए। जो पिंड सत्ती सारे खाजे अगवाई है, जे लोड़े चंगा अपना त्रिपुनो नी सदाई है। जे जरवाना पर है जरवेश करे दी आई है, कोरे न परिये पाई है, कोरे न परिये पाई है।
1: पंथ दसावा नित खड़ी मन जोबन बालिया मदाजे हार।

0: बिन सतगुरु किने न पाया, सतगुरु विचार सुन कर प्रगटाक सुनाया, सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह छुड़ाया, उत्तम में विचार जिन सच्चे सिउ जगलाया, जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।
1: कर कृपा वसो मेरे हृदय, होय सहा

गुरु का शब्द कमाहे। नानक है सुनो जनो, इत संजम दुख जय पौड़ी सेवक दिस तुके, जिन सचो सच त्या निमंत्र।

ਪਾਇਆ।

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार, कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार, कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप अपार, कूड़ मिया कूड़ बीबी।

0: आई बलिहारी कुदरत बसिया तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ जात में जोत जोत में जाता कलकला भरपूर रहा तू सच्चा साहिब सिरस वाले जिनकी ती सो भर पया कहो नानक करते किया बाता जो किस करना सो कर रहे या महला दूजा
1: योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जान है ते हो नानक ता का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
0: एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा ते आत्मा आत्मा बस देवस जे को जान भयो नानक ता का दास है सोई निरंजन देव महला पहला
1: कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए पौड़ी पड़िया होवे गुनेगार तायो मी साधन मारिए जिह का निकालना तिवे हो नाव पचारिए सिकलन खेडिए जित दर गए गया हारिए पड़िया ते उमिया विचार
0: अगे विचारिए
1: मुचले सो अगे मारिए अगे

ਹੱਥ ਗੁਰ ਪਰ ਕਾਚੀ ਦੇ ਮੋਹ ਫੁਨ ਬਾਂਦੀ।

यह मीठी जी माहे हिताने बाल बंत छप कर तो पावा देखत सुनत प्रभ अंतर जामी।

आकाश नामावत बिष्टा अस्त क्रिम उदर परयो है। दह दिस ताए महाबिखिया को पर धन छीन अज्ञान हरयो है। जोबन बीत जरा रो

0: प्रेम भगत उदरे से नानक कर कृपा संत आप करयो है।
1: गुण समूह फल सगल मनो

0: दुख हर सर्व रो खंडन गुणकारी, काम क्रोध मद मत सर तृष्णा, बिन सजाहे हर नाम उच्चारी। इशनान दान पापन सुच किरया, चरण कमल हृदय प्रबतारी। साजन मीत सखा हर बंद जीतान, प्रभ प्राण अधारी। ओट गही स्वामी समर्थ, नानक दास सदा बलहारी।
1: आवधि कट्यो ना जातो, प्रेम रस चरण कमल संग। दामन बंध्यो ना जात, विदे मन दर्श मग। पावक जर्यो ना जात, रहो जन तूरे लग। नीर ना साक्ष बोर, चले हर पंथ पग। नानक रोग दोख अग मोह, सिदे हरि नाम खग।
2: उद्दम कर लगे बोह पाती, बिचरे अनक शास्त्र बोह खटुआ। पूजा चक्र करत पसम लगाए, तीरथ बोह परमते। सूखम देह बंधे बोह जटुआ, बिन हर भजन सगल दुख पावत। जो प्रेम

हम अव गुण पर एक गुण नाकी अमृत छाट बिख बिख खाई माया मोह परम पूले सुत दारा से प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत

सेविया अहनिश सहज सोभाए दर्शन परसय गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफ तख समी नूर अर सोह कुर सोह चटिया तुद डठे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया सजन सचा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोही सबना दिसाह सजन सचा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोही सबना दिसाह सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी गुजरी महला जिस मानुख पह करो बेनती सो अपने दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय आराध्या

जिस मनुख पह करां बेनती सो अपने दुख भरिया पर ब्रह्म जिन हृदय आराध्या तिने पौ सागर तरिया।

प्रभताज अवर सेवक जे होई है तित मान महत जस काटा रहा माया के संबंध सैन साक तित ही काम न आया

तिस संग मन बांछत फल पाया।

0: करते रह सच नाम मेरा, सच नाम आधार मेरा जन पुखा सब गवाइयां,
1: शांत सुख मनवाई वसे आज ने अच्छा सब जाइयां,
0: सदा कुर्बान कता गुर बिट्टों जिस दियां वडियां आइयां, पहलन को
1: सुनो संत शब्द।

0: अंत सुनो बट पाप क्यों सकल मनोरथ पूरे दुख रोग संता पुत्र सुनी सच्ची बाणी
1: साजन भय सर से पूरे गुरते जानी
0: सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रहया पर पूरे विद्वंत नानक।

माफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वल्लों कड़ाहा प्रसाद भेटा कीता गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नो अपने दरो करो सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावा पूरिया करनिया आप जी दे हजूर कड़ाहा प्रसाद दी देग हाजर है दर परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे

ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।

सिमरुख सरायरा अत दीर्ग अत मुच ओए जया वह आस कर जाहिं रासे कित

0: अगे वसनाणिए पितरी चार करे वडिए हथ दलाल के मुसफिए करे नानक गैसो मिले जे खटे काले दे महला पहला
1: जो जो

0: लगे चाकर जे चले कसमें पाए और मतिशनो अगली वजो बिधूना खाए कसमें करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजो गवाए अगला मुंह मुंह पाना खाए जिसदा दिता खावना तिसके ये सहवास नानक हुकुम न चले नाल कसम चले अरदास
1: जरा अंतर को

कै जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत खसमदी नूर अर सह कुर सह चटिया, तुद डिठे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह हो सिर शाह दशाह, जिस पास बैठियां सोइया सबना दावे साहो। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दशाह, जिस पास बैठियां सोइया सबना दावे साहो। सतनाम श्री वाहे गुरु, साहिब जी गुजरी महला पंजवा, जिस मानुख पह करां बेनती सो अपने दुख भरिया। पार ब्रह्म जिन हृदय आराध्या तिने पौ सागर तरिया। जिस मानुख पह करां बेनती सो अपने दुख भरिया। पार ब्रह्म जिन हृदय आराध्या

फिरत फिरत तुमरा द्वार आया, पंजन हर राया साध के चरण तोर जन बांछ सुख नान के हो पाया फिरत फिरत तुमरा द्वार आया पै पंजन हर राया साध के चरण तोर जन बांछा।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिम्मे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-544-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd Avenue North ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज का पता है 3501 23rd Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी ले पॉल सेखू जी नो 403-829-5000 या फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड का पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

सच्चे साहब दी हजूरी विच जदों जाइए तां पेटा की रखिए। अलख नरंजन एको वरतै, एकै जोत मुरारी, सब जाचक तू एको दाता, मांगे हाथ पसारी। ला कीरी तो बर्मा तक अकाल पुरख वाहिगुरु दे दर तो ही सारे मंग रहे हैं, ते उस अकाल पुरख वाहिगुरु अगे की रखी। ए तन दौलत पदार्थ तां उहदी देन है और जुगा जुगंतर सानू देंदा आ रहा है, पर असी की रख सकते हैं उहदे अगे। तां धन गुरु नानक सच्चे पातशाह कहन लगे, भाई अमृत वेले उठ के इशनान करे ते एकागर चित हो के मुँह के बोलन बोली है, जित सुन धरे प्यार। इस मुख दे नाल अकाल पुरख वाहिगुरु दी उस्तत कर, ए उस्तत उसकी बेटा करेगा ये कबूल करदा है। किसी तन दौलत दे वटे प्रसन्नता नहीं मिलनी, तन गुरु नानक

राजा हरिचंद बड़ा धर्मात्मा राजा होए। इसकी घरवाली भी बहुत धर्मात्मा सी। वड़ी राती उठ के सतसंगत विच जाके बैठना ते फिर राजे दे उठन तो पहला पहला आके फिर आके सौ जाना। इसे तरह कितना समा सतसंग करदी रही, नाम दा रंग चढ़दा रहा, अकाल पुरख वाहिगुरु दी कृपा होंदी रही। क्योंकि रंग लागत लागत लागत है, जेहो जी कोई संगत विच बैठदा है हौले हौले ओहो जिहा ही रंग चढ़ जांदा है। क्योंकि पंछी जेहो जे ब्रिश ते बैठेगा ओहो जे ही फल प्राप्त होणगे, जे अंब दे ब्रिश ते बैठा है तां अंब ही मिलने हैं। इसे तरह मनुख दा जीवन जे साकत पुरशां विच जा पवे तां पापां दा भागी बन जांदा है, जे सत संगत विच जांदा है तां इसते पुन वध जांदे हैं। राजा हरिचंद की घरवाली रोज सतसंगत विच जाके गुरबाणी का कीर्तन सुनना, आनंद मानना, क्योंकि यह भी आत्मा की खुराक है। जिस तरह साढ़े शरीर नू खुराक की लोड़ है, साड़ी आत्मा नू ही परमेश्वर के नाम की लोड़ है। वो नाम का भोजन शक्ति है जो साढ़े अंदर जिदे सदके साडा शरीर चल रहा है ना, उसनू ही भोजन की भुख लगती है। पर वो भोजन नाम का शक्ति है। उच्चारण करो श्री तो तारा राणी सतसंगत विच रोज जाना ते राजे दे जागन तो पहला पहला आके फिर सौ जाना। अज अचानक राजे दी जाग उगड़ी तो की तकिया कि राणी नहीं सुती। मन विच शक पैदा हो गया कि किधर जाती है अद्धी राती उठ के। मन विच सोचिया जितने तक कोई अखी ना वेख लईए तां उस तरह एवें किसी नूं कलंक लाउणा या कह देना चंगा नहीं होंदा। चंगी तरह छान बीन कर लैनी चाहीदी है भी किधर जाती है। तां राजा अज सुता नहीं पर उवें ही कराड़े मारन लग गया। ते राणी ने समझा वही हुण आराम विच हो गया है। ते राणी सतसंगत वल तुर पई। मगरे मगरे राजा जा रहा है। राणी जदों सतसंग विच जा पहुंची ते मन नूं त्रयास आया वही चलो किते माड़े पासे तो नहीं ना जांदी, किते माड़े पासे तो नहीं ना गई। अकाल पुरख वाहिगुरु ईश्वर की भगती विच ही जुड़ी हुई है ना। पर राजे ने राणी की एक खड़ाऊ चुक के कर ले आंदी, भाई पुछांगे भाई तेरी दूजी खड़ा कित्थे है। ते राजे ने आके संदूक विच उस खड़ा नू बंद कर दिता। राणी जदों कीर्तन सुनदियां कीर्तन दी समाप्ति होई ते बाहर निकली तां एक खड़ा दा जोड़ा पिया। बड़ी डरी कि मैं राजे नूं की जवाब देवांगी, जदों पुछेगा भाई दूजी खड़ाम किथे है तो मैं जवाब की देंगी। मुड़ के जाके साध संगत विच जाके बेनती कीती कि साध संगत अरदास करो मेरी दूजी खड़ाम मैनू मिल जावे, मेरी पत रह आवे, मेरी इज्जत रह आवे। जे राजे कोल ए पोल जार हो गया तो राजा मेरे ते शक करेगा। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। सारी संगत ने जदों अरदास कीती तां अकाल पुरख वाहिगुरु ने ओह जी पुरानी खड़ाव परमेश्वर ने भेज दिती। कोई पछाण नहीं सकदा कि यह पुरानी है जां नवी है। राणी आके उसी तरह रोज दी तरह सौ गई। सवेरे जदों राजा उठिया तां कहन लगा जरा अपनियां खड़ावां तो दे, मेरियां हैं नहीं इत्थे नेड़े ते मैं इशनान कर दवां। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। राणी ने जदों दोवें खड़ावां उहदे अगे रख दित्तियां हैरानी दी हद नहीं रही कि मैं तां खड़ाव चुक के लियाया सां, दूसरी कित्थों आ गई है। जाके
ਜਾਂ ਪੇਟੀ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੜਾਵੀਂ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਖੜਾਵ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੇਰੀ ਖੜਾਵ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਖੜਾਵ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨੈਣ ਕਟੋਰੇ ਭਰ ਆਏ। ਆਖਿਆ, ਰਾਜਾ, ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਜਿਆ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੋਹਿਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700 प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646 इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983 प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue, South East, Calgary।

0: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6 स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। एबीएम कॉलेज विच किसे भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या आईटी प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 3232nd एवेन्यू नॉर्थ कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फेशिया स्मार्ट रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी ले पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। कैलगरी दे इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो ते आओ हुण सरवण करिए गुरमत विचार भाई पिंदरपाल सिंह जी दी रसना तों।

गावो, हर जन मंगल गावो। बिसर नाही कबहुँ हिएते, एह बिद मन में पावो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा त्वाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नू 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखोजी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 23 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646 इना दा पता है 2023 34th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर केटरिंग स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा दवाई देना अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

गुरु भी मंगद गुरसिखा की हर तूड़ दे हम पापी पी गत पाहे। अरदास करो पातशाह किसे बख्शे हुए गुरसिख दी चरण तूड़ दे दियो साडियां तकदीरां बदल जा साडे कर्म बदल जान। ये अरदास करो जरूर मिलदी है। गुरसिखा की हर तोड़ दे गुर

0: सतगुरु कृपा करन तुहाडी सारिआं दी हाजरी दरगाही परवान होवे। समूह संगतां दा धन्नवाद, कोटान कोट शुकर दीन दुनी दे पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा जो त्रुट के बख्शिशां करदे ने। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साडे सारिआं उत्ते नदर कृपा करन। आपां गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी नाल जुड़ के अपना जीवन जन्म सफल करिए। इन्नीआं बेनतीआं प्रवान करिओ, होइयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा बख्शणी। सारी संगत दा धन्नवाद। रखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो, पंजाबी रेडियो 102.7 FM, जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी। प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हॉल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हॉल नू 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंकुएट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फिश या स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मरिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। और जानकारी ले कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700, 403-439-7700।

प्रोग्राम का यह हिस्सा ABM कॉलेज के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह के हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स की जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो bobby.dodd@403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-453-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, North East, Calgary।

महाराज जी ने सजे हुए दीवान वेच तमाम गुरु प्यारियां संगतां गुरसिखां नू अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु दे नाम दी महानता जनाई है कि ए गुरु दे प्यारे गुरसिखा जे परमात्मा दा नाम जिंदगी वेच जीवन दे वेच तेरे कोल है तेरे सारे कीते हुए कार्ज सफले ने। जे परमात्मा दा नाम पले नहीं चाहे लखां करोड़ां तों कार्ज करी चल जिंदगी अंदर किसे लेखे विच नहीं आउणगे। सतगुरु पातशाह महाराज जी कहिंदे जे परमात्मा दा नाम जिंदगी दे विच नहीं है नाम जपे तो बिना बंदा बहुत तरह दे 36 प्रकार दे पदार्थां नूं खाया खांदा है। कदे इस लवण सहत लूण वाले पदार्थ खांदा है कदे साध संगत मिठास वाले खांदा है कदे बखो बखरे रस लै करके पदार्थ छकदा है। नाम जपे तो बिना जिन्ना भी बंदे ने खाया खादा जिंदगी विच जो भी पदार्थ छकिया उनू तरकार है उनू तरकार है। जेड़ा त्रिग शब्द कदों बनदा किसी व्यक्ति ने कोई माड़ा कर्म किया तो असीं उन्हू लानत पाउंदे हां। जदों साध संगत जी 100 लानतां एक जगह ते इकट्ठियां हो जांदियां ते उन्हां दा फिर एक जा करके त्रिग बनदा त्रिकार बनदी है। ते इस प्रकार जां विद्वानां ने ऐसे भी दा जिक्र किया भी किसी नूं फिटे मूंह कह देना 100 वारी फिटे मूंह कह दईए ते उहदी इक लानत बनेगी ते 100 लानतां किसी नूं पाउणियां इन्नियां लानतां दा एक त्रिग शब्द बनदा। श्री गुरु अमरदास महाराज जी कहिंदे ऐ जीव जे तेरे कोल परमात्मा दा नाम नहीं जिंदगी विच जपिया गया जिन्ने भी पदार्थ तू जिंदगी दे अंदर खाया खादे हन उह सारियां नूं तरकार है तरकार है। जां दो शब्द सतगुरु ने त्रिग त्रिग वखो वखरे वरते ने। बंदा किसी पदार्थ नूं खाण तों पहलां उहदे जतन सोचदा है भी अज आ पदार्थ मैं फलानी जगह तो लैके आवांगा फिर इस तरह तैयार करांगा इस तरह बैठ के छकांगा मैनू आनंद सुख मिलेगा। सतगुरु पातशाह कहिंदे जिहड़ा खाया खाण दा तूं तरे जतन करदा उस नूं भी तरकार है। फिर जिस वेले पेट दे अंदर खा के वह पदार्थ चलिया गया ते खादे हुए नूं भी तरकार है। नाम तों बिना जो भी कुछ खादा तरकार योग है त्रिग त्रिग सोया। फिर जे नाम नहीं जपिया ते बंदा कहिंदा भी अपनी जिंदगी विच हुण लंबियां तान के सौ के आनंद माणीए ते सौण दे बारे भी बंदा बहुत कुछ सोचदा भी इस तरह की सेजा होवे इस तरह का पलंग होवे इस तरह का सराहना रखिया होवे उपर तलाई रजाई आदक उहदे सारा प्रबंध करिए फिर सेजा का चंगा आनंद बनेगा। जिहड़ा सौण दे वास्ते जतन करदा नाम जपे तो बिना वह जतना नूं भी त्रिग तैनूं लानता ने। फिर बंदा सौ जांदा है ऐसी परमादी नींद दे विच बेसमझी अविद्या की नींद अंदर सोया सुता पिया इहो जी सौण नूं भी सतगुरु कहिंदे तरकार है। जे नाम नहीं जपिया तां खाण पीण नूं भी तरकारां ने ते सौण नूं भी सत

अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु जी जग जीवन दाता, तुसी जगत दे अंदर जितने जीव पैदा कीते ने सारियां दा जीवन तुसी आधार बनी होए हो, सारे जीवन दा तुसी आसरा हो ते दाता तुसी श्रोमणी दाते हो। दुनिया विच भी चार तरह दे दाते, सतिया मन संतोख उपजे देना कै विचार, दे मंगे सहसा गुणा सोभ करे संसार। ए चार तरह दे दातियां नूं भी दाता देने वाले श्रोमणी तुसी दाते हो। जन सेवक तेरे सतगुरु पातशाह महाराज जी कहिंदे, जिहड़े जन दास आप जी

जिन्ने भी दोख दुख हन तुसी निवारे निवृत कर देंदे हो। चाहे शरीरक कोई दुख होवे तो भी परमात्मा निवृत कर देंदा, ते परमार्थ दे रास्ते दे विच जांदियां कोई दुख महसूस होवे उत्थे विघन रुकावटां पैंदियां होण उह भी परमात्मा दूर कर देंदा। वैसे जिहड़ा दुख दुख है इह सब तों वड्डा जम्मण ते मरण दा दुख है। जन्म दे समें 9 महीने पुठे लटकना पैंदा, मरण दे समें शरीर दे विचों जिंद नमाणी कढ़िए हड्डां कों कड़काए। बंदे दा घंड बोलदा है, ओदे हाथ पैर जेड़े ने ठंडे होने शुरू हुंदे जिथों जिथों ओ जिंद कढ़ी जांदी खिच करके, ते इस प्रकार बड़ा उत्थे दुख महसूस हुंदा। ये जम्मण ते मरण दे वड्डे दो दुख मन्ने ने। उन्हां गुरु प्यारियां दे महाराज साहिब जी तुसी

हे अकाल पुरख परमात्मा जी तू दयाल, दुनिया विच बड़े दयालु लोग पए ने, बड़िया दे मन विच दया पैदा हो जांदी, तरस पैदा हुंदा किसे दुखी गरीब नूं वेख करके, परंतु जे उन्हां नूं असीं दयालु कहीए ते उन्हां दे अंदर बैठ के दया पैदा करन वाला कौन? ओ परमात्मा तू आप है। दूजे बंदे दे मन विच नहीं दया पैदा हुंदी, जिहदे मन विच आप बैठ करके दयालु सुभा पा दिना वह फिर दया का घर बन जांदे। तू दयाल, तुसी आप ही दया दे घर हो, तमाम दयावाना ते भी दयालु तुसी तरस करन वाले हो। दया पत दाता, फिर कुछ गुण हन बंदे दे कोल, जिस प्रकार

परमात्मा वाहिगुरु त्रुट करके अपनी नदर किरपा मेहर बख्शिश कर देंदा सोई जन पाए ओही गुरु दे प्यारे अकाल पुरख परमात्मा।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डीजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144-3670 63rd Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़

0: कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्राम ते जो भी विचार पेश किए जाते ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
1: ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 है ये कहां से छपा है ये वेद? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 2। इन्होंने यहाँ लिखा है महर्षि दानंद सरस्वती कृत, लेकिन ये दानंद जी का अनुवादित नहीं है, दानंद जी ने अनुवाद नहीं कर रखा है, गलत लिखा है इन्होंने। चलो हम अपना उद्देश्य पूरा करेंगे। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86। ये है मंत्र नंबर 26। इसमें क्या बताया है, अनुवाद किया है ये, इसमें मूल संस्कृत है, ये सारी मूल संस्कृत है। इसमें ये कबीर शब्द है, कबीर, हम इसको कबीर बोलने लगे, वह को हम वह बोलते हैं, ये कबीर। यहां देखो इनके द्वारा अनुवाद है, ये किसी और ने किया हुआ अनुवाद। यज्ञ करने वाले यजमानों यानी भक्तों के लिए, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को मर्दन करता हुआ नष्ट करता है, विघ्नों को नष्ट करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, क्योंकि भगवान परमात्मा का वास्तविक रूप एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी है, तो यहां हम चरम दृष्टि से उसको नहीं देख सकते, इसलिए वो अपने रूप का हल्का तेज पुंज का शरीर धारण करके, उसको हल्का करके यहां आता है अपने रूप को, इसी सिद्ध की साकार है भगवान, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यहां इन्होंने क्या किया है, इसमें यो हलंत वाला रह जाता है, अत्य अलग कर देते हैं, ये अत्यो कबीर अत्यो, रह छोटा हो जाता है, तो उस रह को इन्होंने यहां दो अपसर्ग में बदल दिया, तो ये कवि बना दिया, तो कवि का अर्थ सर्वज्ञ नहीं हो सकता, कवि का अर्थ काव्यकार तो हो सकता है लेकिन सर्वज्ञ नहीं हो सकता, सर्वज्ञ तो परमात्मा ही होता, तो हम इसको हम जैसे इसको हम कबीर देव लिख दें, वो कबीर देव वह परमात्मा कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ यानी बिजली जैसी गति से चलकर वर्णीय पुरुषों को यानी श्रेष्ठ भक्तों को व्यक्तियों को प्राप्त होता है। अब 27 में ये क्या लिखा कि प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं, ये अनुवाद इन्होंने ठीक नहीं किया है, जो नाना रूप में स्थिति को लाभ कर रही हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होती हैं। अच्छा, प्रकाश पुंज परमात्मा को, प्रकतेजों में परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं, जो परमात्मा द्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, तीसरे पृष्ठ पर यानी वो तीसरे स्थान पर ऊपर भाग पर विराजमान है, तो साकार है, एक देशीय है, एक स्थान पर रहता है और प्रकाश रूप है। अच्छा, अब वो किस उद्देश्य से यहां आता है ये क्लियर करेगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 82 का मंत्र 1-3 तक हम आपको दिखाते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु यानी सबको सबकी सृष्टि करने वाला परमात्मा प्रकाश रूप और सद्गुणों की वृष्टि करने वाला है, पापों का हरण करने वाला है, वह राजा के समान देखने योग्य है, दर्शनीय है, राजा के समान दर्शनीय है यानी साकार है वह प्रभु, राजा के समान दर्शनीय है, देखने योग्य है, साकार है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुषों को, वह श्रेष्ठ भक्तों को, अच्छी आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उनको मिलता आकर के। कैसे? जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इसी प्रकार उत्पन्न वाला परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। आप देखो ना, जिस प्रकार वो परमात्मा कैसे मिलता, कि जैसे विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता, जैसे आकाशीय बिजली गिरती है तो वो विशेष किसी स्थान पर गिरती है, जैसे पहले, अभी वही स्वभाव है लेकिन अब काशी धातु रही नहीं, पहले काशी धातु के बेले थाली होया करते थे, परांत भी होते, बेले थाली ज्यादा होते थे, और उनको बाहर अगर वर्षा में रह जाते थे तो उनके ऊपर अमूमन कहीं ना कहीं बिजली अवश्य गिर जाती थी, आसमानीय बिजली, क्योंकि उसका उससे कोई विशेष कनेक्शन है जिस पर वो आकर्षित होती है। तो इसी प्रकार बताया है कि वो परमात्मा उन प्यारी आत्माओं को मिलता है जो मिलने योग्य हैं, उनके लिए आ सकते हैं, क्योंकि परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, वो कुछ एक पुण्यात्माओं को विशेष रूप से मिले, उनको ही ज्यादा वो ही समझ सके उनको, बाकी वो टोड़ गिल 64 लाख तो चेले हो गए थे, वह बिना समझ सके, और अन्य जो ऋषि में ऋषि मंडलेश्वर गुरु आचार्य और वह बिना मालिक को पहचान सके, तो उनके लिए आना ना आना बराबर होता है भगवान का। तो विशेष उन्हीं आत्माओं को आकर मिलते हैं जो उनको समझ सकते हैं और उनका आगे प्रचार कर सकते हैं, जैसे बिजली अपने स्नेह वाले पदार्थ पर आकर गिरती है, इसी प्रकार परमात्मा भी उन अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। फिर किस उद्देश्य से आते हैं ये और देखिए आगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का आपने एक मंत्र पढ़ा कि वह परमात्मा राजा के समान दर्शनीय है और वह वर्णीय पुरुषों को, अच्छी आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त हैं उनको, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उनको मिलता है। कैसे मिलता है? जिस प्रकार विद्युत यानी आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को प्राप्त आधार बनाकर प्राप्त होती है। उद्देश्य क्या है उसका आने का, परमात्मा का? अब दूसरा मंत्र है, यहां लिखा है कबीर वेदस्य, ये कबीर इस ऊपर लगा हुआ हाफ, तो इसका इन्होंने कवि शब्द कर दिया हटाकर रह। अब जैसे ये समझना जरूरी हो गया, आप देखिएगा ये यजुर्वेद है और इसको ये रह हटा करके दो अपसर्ग भी लगाए जा सकते हैं। ये यजुर्वेद अनुवाद किया है महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने, कंप्लीट 40 के 40 अध्याय अनुवाद किया है महर्षि दयानंद, इसका राइटर नहीं है, केवल अनुवाद करता है। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली, और ये महर्षि दयानंद सरस्वती कृत है 40 के 40 अध्याय। और ये कहां से प्रकाशित है? प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। अब इसमें दिखाएंगे आपको कि एक 36 नंबर अध्याय में ये स्पष्ट किया, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ये है 6300 अध्याय यानी 36वां अध्याय। इसमें यहां लिखा है रिचे वाचम परपधे मनो यजु परपधे, ये यजु शब्द है यानी यजुर्वेद का जो ये ऊपर का हिस्सा हटाक है, जैसे इस पर यहां लिखा था ये यजुर्वेद है, ये रह हटाक है और यहां अपसर्ग लगा दी 36 में जाएगी प्रथम मंत्र में, ये प्रथम मंत्र में यजु। अब इसका अनुवाद करते समय दानंद जी ने क्या किया है, यजु को यजुर्वेद लिखा, बिल्कुल ठीक किया। अब इस यजु को कोई नहीं समझ सकता, जबकि इसके साथ ये लिखना पड़ेगा यजुर्वेद है। जब ये यजुर्वेद लिखा जाएगा तो ऊपर रह लाना पड़ेगा, तो हम इसको यजुर्वेद बोलते हैं, यजुर्वेद अपने लोकल लैंग्वेज में। तो ऐसे ही कबीर देव ये अपसर्ग हटा दिए, हटाकर रह हटाकर अपसर्ग लगाने से जो कवि लिख दिया उन्होंने, तो हमने जब कबीर देव लिखेंगे तो रह ऊपर लाना पड़ेगा, तो हम कबीर देव कहने लगे, कबीर कबीर साहब, देव माने परमात्मा। तो ऐसे अब ब्रंश हो गया, इस कवि को हम कबीर कहने लगे। ये वास्तविक नाम है प्रभु का जो वेदों में प्रमाणित है, और इस यथार्थ नाम से ही परमात्मा यहां आते हैं, और इसी का यथार्थ, ये वास्तव में यथार्थ नाम भी मालिक का यही है। जैसे सतपुरुष, अकाल मूर्त, सबद स्वरूपी राम, परम अक्षर ब्रह्म, ये तो इनके उपमात्मक नाम है, उपाधि के नाम है। जैसे देश के प्रधानमंत्री जी का नाम, शरीर का नाम अन्य होता है, और वैसे उनको प्रधानमंत्री, लैंग्वेज डिफरेंस होने से प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उनका शरीर का नाम कोई और, वास्तविक नाम और होता है। ये उपमात्मक नाम, उपाधि के नाम। तो अब यहां कबीर देव को समझने में आसानी हो जाएगी, आपने भ्रमित ना होगे। ये देखिएगा, अब ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का इब आप दूसरा मंत्र पढ़ रहे हैं। यहां लिखा है, कबीर वेदस्य, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बिजली जैसी गति से हमारे अध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। परमात्मा भी कहते हैं अपनी वाणी में, पहुंचूंगा चन्ने एक मजन अपने के हेत एक सन में। और आप, इन्होंने लिख दिया कवि, इसको कवि लिख दिया, हमने यह लिखना चाहिए ये कबीर देव है, कबीर देव, कबीर साहब, जैसे भी आपको उदाहरण दिया था यजुर्वेद का। तो अब इसको हम अगर कबीर देव लिखा तो यह लिखना चाहिए हमने इसको पूर्ण करके कबीर देव, वो कबीर अगर इसी दीपसुद्धि हिंदी में लिखा तो कबीर देव लिखे, और हम उसको कबीर देव कहने लगे, कबीर साहब, वो कबीर साहब हैं, आप कबीर हैं, आप कबीर साहब हैं, कबीर देव हैं, आप कबीर परमात्मा हैं। ये उसको कवि कहते हैं, जो व्याकरण के मास्टर मानते अपने आप को, वो कहते हो तो कवि है, तो आप ये सोच लिये वो कवि साहब है, हम उसको कबीर साहब कह दे, बोलन का अंतर है, वो वही परमात्मा है जिसका वेद गुणगान कर रहे हैं, जो काशी में आया था जुल्हा रूप में, शुद्ध स्वरूप है, हमारे पापों को दूर करके हे सोम आप हमको सुख दें। अब तीसरे मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का मंत्र 3, पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं, और पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में गति करते हुए आप सर्वव्यापक नहीं, आप हैं, आप स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हैं। अपने आत्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में लिखा है कि आध्यात्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्मणे मुखे, मुखे माने उनके मुखारविंद से, उनके मुख कमल से बोली गई वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, और उनको जानकर फिर आप पूर्ण रूप से यथार्थ भक्ति करोगे और आप फिर भ्रमित नहीं रहोगे। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू भगत बनेगा, यानी तब तो तू भक्ति के योग्य होगा, भक्ति तेरी प्रारंभ होगी। और गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जब बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत और छोटे जलाशय में प्राणी की जितनी श्रद्धा रह जाती है, उसी प्रकार उस परम अक्षर ब्रह्म के ज्ञान को तत्वदर्शी संत से प्राप्त करने के उपरांत, उस परम अक्षर ब्रह्म की स्थिति से परिचित होने के उपरांत, आपकी जो श्रद्धा हमारे अंदर रह जाएगी, अन्य भगवानों में रह जाएगी। पहले क्या होता था कि सभी साधन तालाबों से ही हुआ करते थे, जैसे सिंचाई भी तालाब से, पानी पीना भी, पशुओं को पियाना भी तालाब से ही होता था। तो इस प्रकार उसमें वर्षा हो जाए तो वो तालाब, छोटा तालाब जलाशय होता था, वो भर जाता था, और यदि एक वर्ष वर्षा ना हो तो वो सूख जाता है और उस पर आधारित प्राणी भी संकट में पड़ जाते हैं, उनकी भी जान चली जाती है, प्यासे मर जाती है। और उन प्राणियों को फिर बहुत बड़ा सरोवर, बहुत बड़ा जलाशय, बहुत बड़ी झील प्राप्त हो जाए, जो 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी जल समाप्त ना हो उसका, तो कहा कि उसके पश्चात उन प्राणियों की आस्था श्रद्धा जितनी उस छोटे जलाशय में रह जाएगी उसकी बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत, ऐसे ही तेरी श्रद्धा उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के उपरांत, उसके ज्ञान के प्राप्ति के उपरांत छोटे अन्य देवताओं में, भगवानों में, ऐसे तेरी श्रद्धा रह जाएगी। अपने आत्मा उस छोटे जलाशय में जो आश्रित थे, वो जल बुरा नहीं था लेकिन वो अपर्याप्त था, उसकी अक्षमता बहुत कम थी। इसी प्रकार हम जिन भगवानों की साधना करा करते वो बुरे नहीं थे लेकिन पर्याप्त नहीं थे, और अब हमने पूर्ण परमात्मा मिल गया, जलाशय मिल गया, कौन ऐसा नालायक से जो पाचन रहेगा। अब कोई एमएलए है और उसने कोई मुख्यमंत्री बनाता हो, समझ गई बात, इतना संकेत बतेरा, तो हमने जो उपलब्धि हो तो हम पाछे कैसे पीछे रहेंगे। तो इसी प्रकार इस अध्यात्म तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत आप जी की श्रद्धा अन्य भगवानों में आप बैठ जाएगी, वो बुरे नहीं लगते लेकिन वो मारे काम के कोने, हमने जो वस्तु चाहिए उनके पास है नहीं, तो ये ज्ञान से ही प्राप्ति होती है। अब वो सचिदानंद गण की वाणी सुनाएंगे आपको थोड़ी। अब जैसे आपने श्रीमद् देवी भागवत में पढ़ा कि कलियों के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और दुर्गा की पूजा करते थे, हर कितने वेदों में दुर्गा की पूजा का प्रावधान नहीं, इसे से था उनमें वेद का ज्ञान नहीं था, उनको विश्वास नहीं हो पाया, ओम नाम का जाप वो जप जपा के छोड़ छाड़ दिया, फिर अपना जंतर मंत्र, क्योंकि देवी की उपासना का एक मंत्र हमने आपको दे रखा है, केवल उस एक मंत्र से कई वर्षों तक उसका जाप करके सिद्धियां प्राप्त कर लेते, जिससे उनको उन सिद्धियों के आधार पर वो अन्य जनता से फिर धन इकट्ठा कर लेते थे, उन सिद्धियां दिखा उन, वो यहां तक सीमित हो गए। फिर पुणात्मा आप जी को जो मंत्र दिए गए हैं ये पूरे निष्कर्ष यानी यथार्थ मंत्र हैं, जो प्रथम मंत्र है, तो आप जी ने इसमें एक का किसी का जाप नहीं करना है। जैसे डॉक्टर ने, वैद्य ने एक चूर्ण बना रखा है और उस चूर्ण के अंदर उसने हर तरह की दवाइयां मिक्स कर रखी है, 2 तोड़े फलाने चीज, 2 तोड़े वो, 2, और उसमें से एक ने कोई खावे तो दवाई का काम ना करे वो रानी कर देगी, थोड़ा बहुत चाहे लाभ भी कर दो लेकिन वो रोग ना कटे, तो सभी को मिलाकर खाने से वो रोग नाशक होगी। तो इसी प्रकार वैद्य ने जो दवाई दी वो सही होती है। अब क्या बताते हैं परमात्मा सचिदानंद घन की वाणी, काछे भेक कहां वे भांडी, गट में बैठी दुविधा रांडी, नारी 5-25 पूता, ता कारण फिरता रूता रूता, अजरी बजरी करे बियाना, जिन शब्द अतीत मैल नहीं जान्या, दोती नेती नोड़ी कर्मा, इंद्री नाल चरावे बर्मा, गज कर्मी गुरु आई चेरा, धोवे आत कमल नित फेरिया, सट कर्म बंधन है भाई, चोला पाख लगे निकाई, पांचों मुद्रा करे बियाना, जासे भेद अगोचर जान्या, 84 आसन बस कीने, अनरागी नी तत्न चीने, काम धेनु का कित है बासा, अमृत दूजे पर वे आसा, काम धेनु दो पियो साधु, दुर्लभ दे सतलोक अगादु, 3 सुन में जम की जाली, आसन योग नाम बिन खाली, 4थी सुन लंघ है जन कोई, आवागमन बहुर ना होई, मेर दंड की बाट बताऊं, पैठ दरी बे अमृत ल्याऊं, अक्षरधाम की डोरी सूची, 16 संखी रामत ऊंची, मकर तार का मार्ग जीना, भेद अभेद शब्द घर चीना, सुन मंडल सतलोक बसेरा, बहोर ना हंसा कर है फेरा, सतलोक से सतगुरु आए, अंसा आन शब्द गुरमाए। अब परमात्मा जो है यहाँ तत्व ज्ञान प्रचार करने के लिए आता है, सच्चा ज्ञान प्रचार करने के लिए आते हैं, तो वो सतगुरु कहलाते हैं, सच्चा ज्ञान देने वाले, क्योंकि नकली गुरु घने होते हैं, इसलिए सतगुरु। यहां लिखा है सचिदानंद गण की वाणी में, जो गरीबदास जी को परमात्मा ने अपना भेद बताया, फिर आदरणीय गरीबदास साहेब जी ने आगे ये अमरवाणी डीपीबद्ध करवाई, उसको पढ़ रहा है दास। सुन मंडल सतलोक बसेरा, बहुर ना हंसा कर है फेरा। सतलोक में, सुन मंडल में सतलोक है, सबसे लास्ट पॉइंट ऊपर, वो तीन चार लोक है, और उसमें सुन मंडल सतलोक बसेरा, और वहां जाने के बाद बहोर ने हंसा कर है फेरा, फिर वो लौटकर संसार में कभी नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में जो आपने पढ़ा, तत्वदर्शी संत की पहचान बताई, और फिर कहा कि उसके पश्चात उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जल जाने के बाद प्राणी फिर लौट कर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मंडों की रचना की है, वही पूजा के योग्य है, नथिंग एल्स। तो यहां उस सचिदानंद घन की वाणी में ये स्पष्ट है, सुन मंडल सतलोक बसेरा, सुन मंडल, सुन मन ऊपर, और वहां पर सतलोक एक स्थान है, बसेरा है, रहने की जगह है, बसेरा माने रहने का स्थान, और बहोर ना हंसा कर है फेरा, वहां जाने के बाद वापस यहां फिर कर नहीं आते। सतलोक से सतगुरु आए, अंसा आण शब्द बिरमाए। सतलोक से वो सतगुरु यानी परमपिता परमात्मा सतगुरु रूप बनाकर आए, ज्ञान देने के लिए स्वयं आए, और अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान से परिपूर्ण किया। बंदी छोड़ कबीर गुसाई, दरवे नूर जल में ले जाई, अदली आद कबीर प्यारे, जिन हंसा भव जल आण उबारे। लख 84 बंधन तोड़े, अनरागी से चश्मा जोड़े, शब्द विहंगम सैन उदासी, सुन मंडल रहते अविनाशी। वो परमात्मा ऊपर सुन मंडल में रहता है, यही तो यथार्थ जो परमात्मा कबीर जी का ज्ञान बता रहा है, वही हमारे वेद बता रहे हैं। और बीच में जो अड़ंगा हमारे भर दिया, भगवान निराकार है, ये है, वो है, ये सारा बकवाद में रखी थी इन्होंने, जिनकी दंत कथा थी, लोक वेद था। शब्द विहंगम सैन उदासी, सुन मंडल रहते अविनाशी, सूली ऊपर सेज लखाई, कहो गुरुदेव कौन विद जाई, तख्त हजूरी चाकर लाए, सतगुरु सत के दाग दगाए, सपत अंड पर धाम हमारा, जहां ओहंग सोहंग नहीं पसारा, जहां ब्रह्मा विष्णु वेद न बाणी, शेष महेश गणेश न जानी, जहां राम रहीम करीम ना कोई, अलय अलेख इसम नहीं दोई, खुद खुदाई जाना भाई, तहां कहो किसकी ठकुराई, नो अवतार जहां नहीं कोई, शब्द अतीत रहे निर्मोही, कृत्रिम ख्याल सबक नहीं बाजी, वेद पुराण ना पंडित काजी, धर अंबर नहीं पावक पानी, अगम अगोचर अकथ कहानी, जहां जीवन सीवन सुरत नरता, ज्ञानी गुणी मूड अनुसरता, बेगम पुरा ब्रह्मगत आदु, जहां दास गरीब विराजे साधु। अब इसमें क्या बताया है कि ये कच्छ भेग कहां बांडी, नाना प्रकार के वेशभूषा बनाकर घर त्याग कर चले जाते हैं, और फिर दुनिया को भ्रमित करते हैं, उनको यथार्थ ज्ञान नहीं है। धोती ने तीनोड़ी कर्मा, इंद्री नाल चलावे वर्मा, सौ पाखंड करते फिरते हैं ये लोग। धोती नेती न्योड़ी यानी ये जो क्रियाएं करते हैं ना, योगिक क्रियाएं करते हैं ये लोग, उनके बारे में। गजकर्मी गुरु आई कचेरा, धोवे आंत कमल नित फेरा। गजकर्णी होती है कि जैसे पानी पीकर 2-3-4 गिलास मुंह में और उंगली देकर ऐसे वापस कर देते हैं। कहते गजकर्मी गुरु आई चेरा, और धोवे आंत कमल नित फेरा, यानी इससे आंतें साफ हो जाती हैं, और जैसे नाभि कमल है, पेट के अंदर नाभि कमल है, और इसको साफ करते हैं एक विधि से, अंदर अंदर अभ्यास कर लेते हैं, और वो पेट को घुमा घुमा कर वहां जमे हुए मल को बाहर निकाल देते हैं। उस क्रिया का इतना ही लाभ है, और उससे कोई लाभ नहीं, केवल शरीर को साफ करते हैं। देखिए जानते इसमें क्या कहा परमात्मा ने, गजकर्मी गुरु आई चेहरा, वो धोवे आंत कमल नित फेरा, फेरा माने घुमाया, आपने देखे होंगे कई योगी टीवी पर भी आते हैं और पेट को ऐसा घुमा देते हैं, पेट को ऐसे नो घुमा देते हैं और उससे हम प्रभावित हो जाते हैं, भाई कमाल कर दिया, यूं तक तोड़ पाट दिया इसने। लेकिन उसका यूज क्या है, उसका बेनिफिट क्या है? उससे कहते पानी पीकर निकाल दिया, कुछ आंत साफ होगी, फिर ऐसे पेट की घुमाकर ऐसे ऐसे घुमाकर उससे मैं और जो मल था अंदर जमा हुआ उस आंतों में उससे वो भी साफ हो जाए, बस इतना ही काम है इसका। इससे परमात्मा प्राप्ति नहीं, ये तो एक शरीर को स्वस्थ रखने की विधि है। आगे देखना, सटकर्म बंधन है भाई, चोला पाक लगे ना काई। ये सटकर्म जो है ये भी तुम्हारे ऊपर बंधन है, तुम इनमें लागे रहोगे, भक्ति हो को ना फंड में बड़े रहोगे। और जो परमात्मा ने दिया हुआ शरीर है वो सूक्ष्म शरीर है, भक्ति करने से, उस परमात्मा की साधना करने से आपके ये रोग भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा का कहने का भाव ये नहीं है कि योग अभ्यास ना करना, और वहीं तक सीमित है जो वो व्यर्थ है उनका जीवन। पांचों मुद्रा करें बियाना, जासे भेद अगोचर जाना, चौरासी आसन बस कीने, अनरागी नितत न चीने। ये 84 प्रकार के आसन होते हैं, ऊपर न पैर नीचे न सिर कर लेना शीर्षासन, और भी कई प्रकार के आसन हैं। कहते इन सब ने भी कोई साध लेता है, सबका अभ्यास भी कर लेता है तो उसका क्या बनता है? यदि उसके पास वो तत्व ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है। तीन सुन में जम की जाली, आसन योग नाम बिन खाली। 84 आसन सिद्ध कर लिए, पांचों मुद्रा तैयार कर ली, ये क्रियाएं भी कर ली, पानी पी कर निकाल दिया, पेट घुमा लिया। कहते आसन योग नाम बिन खाली। अगर आपके पास सत साधना नहीं है, ये सच्चे नाम की भक्ति आप नहीं कर रहे हो, तो वो तुम्हारे योग और आसन करे हुए व्यर्थ जाओगे।

0: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नू 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: अरा के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
1: ये दास इस क्रोथाकांड के अंदर झूठे केस में जेल में था। वहां अलग से एक चार कोठड़ियां थी जिनमें वहां आगे आंगन था और उसके अंदर एक नीम का पेड़ था और वहां एक बिल्ला आता था, एक बिल्ला बिल्ली का बच्चा, और वो उसको थोड़ा बहुत दूध डाल देते वहां। वो क्या करता था, दूध पी के और फिर उस पेड़ के सहारे न्यू खड़ा हो जाता, कभी खड़ा और उसके पैर लगा के ऊपर और न पूरा पेट की नो जैसे आसन से करता था, पूरे रूप से नो पेट लगा के नो पूरा और फिर उतरता, फिर दो तीन बार करता। और वो क्या करता था, वहां कोने में टट्टी होता था, फ्रेश होता था तो पहले पंजों से मिट्टी खोद लेता था, वहां फ्रेश होकर के फिर मिट्टी से पंजों से उसको मिट्टी से ढक देता था। तो वो पिछले जन्म में योगी था, पिछले जन्म में योगी था। ये क्रियाएं उसके इबी भी याद है और सूचे ढंग से रहता था। पहले हम देखा करते थे बहुत से व्यक्ति हमारे छोटे से अंतम थोड़ा फ्रेश होकर के जंगल पानी फ्रेश होकर के और मिट्टी से ढक देते थे कि इसकी बदबू बाहर ना जाए। इस प्रकार के ये योगी पुरुष ज्यादा करते थे तो उनकी उस सच्चा नाम ना होने से आज वो उस बिल्ली की योनि में भटक रहा है। तो यहाँ क्या कहते हैं परमात्मा, तीन सुन में जम की जाड़ी आसन योग नाम बिन खाली। अब तीन सुन, इन तीन सुनों में जैसे काल के लोक की, ये जैसे काल ने अपने ब्रह्मांड बना रखा है, ग्रुप बना रखा है ब्रह्मांड का, इनके बीच में एक वोक्यूम प्लेस होता है जिसको सुन बोलते हैं, वोक्यूम प्लेस खाली स्थान होता है। और फिर उसके बाद जो ब्रह्म लोक, ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड और परब्रह्म के 7 संघ ब्रह्मांड का आपस में संयोग है, उनके बीच में भी वोक्यूम प्लेस है खाली स्थान सुन्य, वो दूसरी। और तीसरी फिर परब्रह्म के और सतलोक के बीच में वोक्यूम प्लेस है तीसरी सुन, और चौथी सुन है वो परमात्मा सतलोक में। तो क्या कहते हैं, तीन सुन में जम की जाली आसन योग नाम बिन खाली, चौथी सुन लंघे जन कोई आवागमन बौर ना होई। अब आपको सुनाते हैं कि कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए। गीता के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी आप मनमुखी नाम जाप करते हैं, तो उनकी न तो उनको कोई सुख होता है, ना उनकी सिद्धि होती है, न ही उनको कोई गति प्राप्त होती, अर्थात यूजलेस। फिर 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा गीता जी ने श्रीमद् भगवद गीता में, इससे अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, वो सूक्ष्म वेद में विस्तार से कही गई है। उनमें सारा विश्लेषण दिया गया है कि ये ना करनी चाहिए, ऐसे करते हैं वो ये गलत है, ये ऐसे करते हैं वो ठीक नहीं, और ये करनी चाहिए। गरीबदास जी को परमात्मा ने अपना ज्ञान दिया ताकि ये मेरा गवाह बने, तो संत गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान को बहुत ही प्यारे शब्दों में हमारे लिए एक तोहफा छोड़ रखा है। क्या बताते हैं, सट दर्शन सट बेख कहावे बहुविद दुंदु धार मचावे, ये तीर्थ व्रत करे तरबीता वेद पुराण बट पढ़त है गीता, यो भी वैदा है वैदे से भेद अलहदा यो भी वैदा। वैदा मीन यूजलेस, व्यर्थ है। कौन कौन सा व्यर्थ है, सट दर्शन सट बेख कहावे, ये गिरी पुरी सन्यासी नागा कनपाड़े नाथ वैष्णो कहते हैं, 6 प्रकार के सट भेख, 6 प्रकार के इनकी विधि है, सट भेख कहावे हैं। और इनकी साधना देखे धूम धूमधार मचा रहे हैं, कोई खड़ा होकर तो गुस्सा कर रहा है, कोई उल्टा सिर करके कर रहा है, कोई कान पड़वा रहा है, कोई निराहार रहता है, कोई एक पैर ठाके गर्दन में रख लेता है, खड़ा होकर साधना कर रहा है। नो दिखा आम आदमी ने भाई तो डूंडा ठा रहे हैं भक्ति का, और उनके वो सारे डड़े ढो रहे हैं, क्योंकि ये पता चलेगा हमें सट दर्शन सट भेख कहा में बहुविध धूंधू धार मचा में, तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता, वेद पढ़े तीर्थ व्रत करें, वेद पढ़नी यार फिर ये डड़े ढो है, उसने वेद समझे कोई ना, वेद पढ़े पर वेद ना जाने ये बातें पुराण अठारह, अर्दड़ को अंधे पत्ते खोआवा भूल गया सृजन हारा, वेद पढ़े और वेद समझा नहीं, और फिर वो उल्टी साधना कर रहे तो वेद समझे नहीं उन्होंने, तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़त है गीता, ये भी वेदा है। अब वेद पढ़ लिए, गीता जी का नित पाठ कर लिया, और गीता जी बता क्या रही है, श्रीमद भगवत गीता में वर्णन क्या है वो समझा नहीं, तो वो पढ़ा हुआ पाठ व्यर्थ है। अब जैसे गीता जी में लिखा है ऐसा करने से लाभ होगा, इसलिए कहा कि ये भी वैदा है, ये भी व्यर्थ है। चार संपदा बावन द्वारे जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, ये चार संप्रदायें बनी हुई हैं, और इन संप्रदायों में कहते निज नाम नहीं है, माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सटदल उवा बाई बकदा, ये 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि सतयुग के ब्राह्मण, ये ऋषि कहो चाहे ब्राह्मण कहो, ये सारे उवा बाई बकदे हैं, ये परमात्मा की वाणी बता रही है। उससे पहले आप जी को श्रीमद देवी भागवत से प्रमाणित कर दिया, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, 400 पृष्ठ पर और 6 स्कंद में। वो क्या कहते हैं कि व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे, बता। तो वही यहां परमात्मा कह रहे हैं ये माड़ा गाल हुए हैं मुक्ता, माड़ा गाला करते जे गली में। अब ये माड़ा गले में डालने की बीमारी कहां से शुरू हुई, पहले क्या था, ईब तो हम ये अप टू डेट बाबूजी बनकर पेंट सेंट पे रहा, गोज भी कोई किलो वाले थे जेब, पहले कोई कुर्ते नहीं हुआ करते ना पजामे, एक चादर लपेट लिया करते शरीर पे, धोती बांध लेते और उसी में से शरीर पे कर डाल लेते थे, जेब नहीं होती थी। और माला एक नाम जाप करने का एक साधन है, तो वो जाप करते इतने जाप करते फिर उस माला को गले में डाल लेते थे ऋषि मुनि, और वो भक्त जैसी भी साधना करते थे ओम नाम का जाप करते थे उनसे उसमें कुछ शक्ति आ जाती थी, वो किसी को आशीर्वाद भी दे देते थे उनको लाभ हो जाता था, किसी कोई उनको खाना खिला देता वो आशीर्वाद देते थे, अपनी कमाई में से उनको कुछ वो बेनिफिट दे देते थे भक्ति का। तो आम जनता की बनगी भावना की जिसने माला पहन रखी वो भगत आदमी है, और उस माला वाले की घनी श्रद्धा से सेवा करने लगेगा, हम आज सब आज मारे रोटी खाइयो जी, आज मारा खाइयो जी है, तो वो नो आदर सत्कार शुरू हुआ। तो फिर बाद में कुछ पाखंडिया ने पाखंड शुरू कर दिया, जो माला डाला है उसकी पूजा होती है, तो नकली लोग भी माला डाल के घूमने फिरन लग गए। अच्छा फिर कोई दो दो डालन लग गया माला, दो माला डाल रहा, उन्हें सोचा बोली आत्मा होया करती सब डालो, उन्हें सोचा दोनों आत्मा भक्ति करता होगा, यो गणा भगत, और दो चार चार गालन लाए गए वो और गणे भगत मान लिए उनकी पूजा कर लेंगे। तो ये कहते हैं परमात्मा कि माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये माला गल में गालने से अपने आप को मुक्त समझते हो, नहीं, और सट दल बाई बकदा, इन सट दला में ये चार संप्रदाय कौन सी हैं, चारों शंकराचार्यों से जो चला है ना मार्ग, और इन चारों शंकराचार्यों का विधान आप पढ़ लो तो हंसी आवा अपने ईव, अब आवे पहले तो नहीं पता था। तो यहां ये बता रहे हैं कि सटदल उवा बाई बकदा, ये सटदल माने 6 प्रकार के जो भेख बना रखे हैं ये सब उवा बाई बकते हैं, इनको यथार्थ क्या नहीं है, बैरागी बैराग न जाने बिन सतगुर नहीं चोट निशाने, ये वैरागी बने फिर कहते इनको वैराग का पता है कोई नहीं। अब इसके ऊपर आगे बताया है, बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं, और 500 नार 2500 लड़के ये धुंधु धार मचावे हैं। अब यहां क्या बताते हैं कि वैरागी बन गया बैराग ले लिया, घर छोड़ दिया, घर तो छोड़ दिया। कहते हैं एक नारी त्याग दीनी पांच नारी गैल वे, पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब सैल वे। सुखदेव ऋषि जी ने बाल ब्रह्मचारी रह करके और आकाश में भी उड़ने की सिद्धि उसको प्राप्त थी, सब जगह घूम भटक लिया, लेकिन उसको भी वस्तु नहीं मिली। जब तक संत नहीं मिले, पूरे संत नहीं मिले, उनको भी राहत नहीं मिली, कोई रास्ता नहीं मिला। क्या कहते हैं, तूने एक नारी त्याग दी। अब देखो भगत जो आदमी भक्ति करता है वो घर त्यागता किस लिए है कि मेरे मेरी पत्नी मेरी भक्ति में बाधक है। परमात्मा कहते हैं कि एक नारी तो त्याग दी तने, भक्ति में बाधक जान के। अरे ये पांच नारी गैल वे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये पांचों नारी तेरे साथ रे, इन त्याग, इन चे तो घर में रह के त्याग और चाहे जंगल में बैठ के त्याग, तब मोक्ष प्राप्ति होगी। उस इनको ये त्यागने को बालकों का खेल नहीं, इसको त्यागने के लिए विधि है, यथार्थ मंत्र है। उनके जाप से कुछ दिनों के अंदर अपने आप शरीर में एक ऐसी व्यवस्था उत्पन्न होने लग जाएगी, आप चाहते हुए भी विकारों को उत्पन्न नहीं कर पाओगे, प्रेरित नहीं हो पाओगे, ऐसी स्थिति शरीर की बन जाएगी। तो वो मंत्र एंटीबायोटिक है, वो तने मिले नहीं, उनके ना मिलने से एक नारी त्याग दी और जंगल में चला गया। कहते हैं एक नारी त्याग दीनी पांच नारी गैल वे, पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी वो सैल वे। कहते हैं सुखदेव ऋषि बहुत घूम लिया, तुम तो पृथ्वी पर घूमते हो, ऊपर के लोकों में भी चला जाता था तो भी मोक्ष का रास्ता नहीं मिला उसको, मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं हुआ। बैरागी बैराग न जाने बिन सतगुर नी चोट निशाने, ये बैरागी बैराग नहीं समझ रहे और बिना सतगुरु के चोट निशाने पर लगे नहीं, यानी यथार्थ ज्ञान यथार्थ भक्ति विधि सतगुरु के बिना मिले नहीं और तब तक मोक्ष हो नहीं सकता। बारा बाट बिटम्ब बिलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी, इन सट दर्शनों में सिन्यासी गिरी पुरी नागा ओगड़ और ये नाथ कनपाड़े सुखे नाथ, कहते इन में भक्ति जन्म ठगने की है, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं बोली आत्माएं। बारा बाट बिटम बिलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा सन्यासी दस नाम कहावे, शिव शिव करे न संत से जावे, निर्वाणी नी कछ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। देख कमाल कर दिया, कहती है सन्यासी जो है ये दस नामी होते हैं, ये शिव को भगवान मानते, ये ब्रह्म न भूल गए, ब्रह्म तक की साधना नहीं करते। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में यही निर्णय दिया है। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कहता है कि अर्जुन ये तीनों गुणों के उपासक, रजगुण ब्रह्मा जी सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी की उपासना करने वाले, इनका ज्ञान इस त्रिगुण में माया के द्वारा जिनका ज्ञान हराया जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते, ब्रह्म साधना भी नहीं करते। तो यहां परमात्मा अपनी वाणी में बता रहे हैं कि ये वैदा है क्या, सन्यासी दस नाम कहावे, शिव शिव करे ना सन से जावे, किसी का भी शंका समाधान नहीं है, किस कोई भी निरसंशय नहीं है, शिव शिव करते हैं लेकिन वो ब्रह्म की साधना भी भूल गए, और शिव जी का यथार्थ मंत्र भी और है जो ये दास आपको बताता है। सन्यासी दस नाम कहावे, शिव शिव करे ना संशय, निर्वाणी नी कछ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा, वो ब्रह्म लोक की साधना भी छोड़ दी, ओम नाम का जाप भी नहीं करते, ये भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा, ये भी वैदा सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, भग में प्योंदी भूले धोंदी, चल छिद्र की भक्ति ना कीजे, आगे जवाब कहो क्या दीजे, यो भी वैदा है ब्रह्म कर्म भैरो को पूजे, सत शब्द साहिब नहीं सूझे, ब्रह्म कर्म आन उपासनाएं करते हैं, भैरो की पूजा करते हैं और सत शब्द साहिब नहीं सूझे, सच्चा नाम सत शब्द सच्चा नाम सतनाम और सच्चा साहिब परमात्मा तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ, वो समझ में आया नहीं। जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम नचीन्या गुण गुरु गुण ही ना, यो भी वैदा है, वैदे से भेद अलैदा, यो भी वैदा। नगन निराशा तनकु त्रासा, पशु प्राणी समान समानी, यो भी वैदा है, वैदे से भेद अलैदा, यो भी वैदा। अब क्या बताते हैं, नगन जो कति निवस्त्र रहते हैं नागा, और ये जैनी लोग कहते हैं नगन ये भी निराश जाएंगे क्योंकि इनकी साधना ठीक को ना। नगन निराशा और तनकु त्रासा, शरीर को त्रास दे रहे हैं, गर्मी सर्दी सहन करते हैं, नंगे फिरे। प्रब भगवान ने शुद्धि दे दी, दिमाग दे दिया, अपने गर्म कपड़े पहन ले, सर्दियां में भक्ति करे पीछा छूटेगा। एक बाबा जी ने बोला मैं अवधूत हूं। अच्छा अवधूत है, ठीक है भाई। क्या उसने एक कपड़ा बांध रखा गोड्या तो ऊपर ऊपर का एक लंगोट, और कुछ नहीं ले रखा। जनवरी का महीना और वो बैठा रात ने, मैं उठा वो छुड़ानी जा करते हम पहले, वहां ये काफी आते हैं इस तरह के बनावटी से महात्मा। और उसे दिन में बात हुई, बोला मैं अवधूत हूँ। अवधूत का अर्थ है बिल्कुल नहीं वस्त्र रहना, एक लंगोट और ये कपड़ा लपेट लिया कर पर्दे पे। और वो सारी रात बैठा, नू को डाडा लागे भक्ति कड़ा होती इस पर, और तो उठ के सोए जो, और वो बैठा बरंडे में। मैं उठा, मैं बाबा जी क्या हाल है, ना उसकी जबान खुला, मैं मर रहेगा बेटी का बाप। फिर चाय लाया बनवा के उसकी खातिर, जब तक मुझे आदेश नहीं था नाम लेने का। गरम गरम चाय लाया, एक गिलास सारी पी गया गट गट। मैं बोला कपड़ा उड़ा, बोला ना ना ना ना कपड़ा नहीं। वो ड्रामा कर रहा, उस तरह उसने लोग पसंद करे, भाई तो बड़ा भूत आदमी हर कुछ भी नहीं लेता। तो भक्ति तो उसका याद रही ना, जाडा याद रहा सारी रात, सर्दी याद रही, भक्ति नहीं हो सकती ऐसी बनावटी बातों। नगन निराशा तन कुंतरासा, ये पशु प्राणी समान समानी, कहते नंगे अंडो तू जो पशु कुत्ते जैसे हुए भी नहीं वस्त्र फिरे सारा दिन, तो अगले जन्म में तुम्हारी ये डिमांड भी पूरी हो जाएगी। हाँ अगले जन्म में कुत्ते बना देगा तुमने हांडियो। फिर वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले, ये भी वैदा है, वैदे से भेद अलैदा, यो भी वैदा। कहते वेद पुराण अरे उनके ऊपर कथा कुथा बना दी, पढ़ पढ़ भूले, पढ़े लेकिन अर्थ नहीं खुले, इनके अर्थ तुम समझ नहीं सके, इसलिए ये सारा जीवन बर्बाद कर दिया। भूले जोगी रिधि के रोगी, कान चरावे भस्म रमावे, यो भी वैदा है, व्यर्थ है। तोड़े पाती आत्मघाती, मूड अनाड़ी जड़ से तारी, ताल मंजीरा मन नहीं थीरा, बहुविध नाचे नाम न वाचे, यथार्थ नाम का जाप नहीं करते और सौ पाखंड करते हैं। तपा अकाशी बारह मासी, मौनी पीठी पंच अंगीठी, यो भी वैदा है। बैरागी सन्यासी सेवड़े, तन पर छार लगावे हैं, और पांचों नार पीसों लड़के, ये धुंधु धार मचावे हैं। अब कहते हैं ये वैरागी सन्यासी सेवड़े, ये जो है शरीर पर राख लपेट ली, माथे पर ला ली नरी, मुंह पर ला ली, हाथा के लपेट ली, कहते हैं ये इस तरह के जो तुम आडंबर किए हुए हो, इससे परमात्मा नहीं प्राप्त होता, क्योंकि आपके अंदर वो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये सभी आपके अंदर उत्पात मचा रहे हैं। कंठी माला और मृग छाला, सिर पैर जटा रखावे हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे हैं, फिर ताना री री गावे हैं, यो भी वैदा है, वैदे से भेद अलैदा, वैदा क्यों जान्या, हम सतगुरु भेंटे न्यू जान्या। गरीबदास जी से पूछा कि आपने इसको कैसे समझा ये वैदा है। गरीबदास जी कहते हैं मुझे सतगुरु मिल गए, मुझे सतगुरु मिल गए, कबीर परमेश्वर जी जो परमात्मा स्वयं आते हैं यथार्थ ज्ञान देने के लिए सतलोक से चलकर मुझे वो मिले थे, इसलिए पता चल गया कि ये वैदा है, ये व्यर्थ की साधना है। कंठी ये क्या करते हैं, जो वैष्णो परंपरा है विष्णु जी के उपासक, वो तुलसी की लकड़ी की एक मनिया और एक धागे में बांध कर डालना है गले में, उसको कंठी बोल रहे हैं, और उसी की परंपरा इस कबीर पंथ में घर कर रही है। वो भी उस कंठी के चपेट रहे हैं और माला गाली गल में। तो यहां बताते हैं कंठी माला और मृगशाला दो सिर पे जटा रखा हुए हैं और ढोलक ताल झालरी पीटे हैं फिर ताना रे री गावे। यो भी व्यर्थ है। मन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट पढ़ावे हैं गुजबीरज का मर्म ना जाण्या भद्दर भेख बनावे हैं करुआ और कॉपी न लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं खुद्जा कुत्ती गट में दुती फिर गृह द्वार आवे हैं। अब घर छोड़ दिया भगवान पाने के लिए उन्होंने घर त्याग कर जंगल में जा बैठा और फिर लगी भूख कड़ाके की फिर चला नगरी में दिए माई दिए माई हैं। तो परमात्मा कहे फिर घर क्यों छोड़ा वो घर पर अपनी बनाई रोटी मिलने थी अपना खा और भजन करे पेट के लिए धंधा भी करता अपना मालिक का नाम लेता। अब क्या बताते हैं करुआ और कॉपी न लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं। करुआ बोलना एक हाथ में लोटा ले लिया और एक तन पे एक लंगोट बस बनखंड गुफा बनावे हैं गुफा में जाकर रहने लगे। गुफा भी तो कि मैं वो किसी दिए बनाई होगी वह गर्मी सर्दी ना लगे उसमें जा पड़ा। फिर कहते हैं खुदा कुत्ती गट में दुती फिर गृह द्वार आवे हैं। वह भूख लगी जो फिर गृहस्थी के बारे ना गाद फैलाया के फिर घर किस लिए छोड़ा था। परमेश्वर आए थे कबीर जी उन्होंने हमें एक ट्रायल करके दिखाई थी रिहर्सल करी थी बताई थी एक एग्जाम्पल कोड किया था कि न्यू रहा करो अपना काम भी करे और गणे धन की जरूरत को ना और जब तेरा आठ लग गए मान ले तू सच्ची दिल से भक्ति दरदान धर्म कर रहे हर कभी कोई किसी प्रकार का भी आपके ऊपर संसारिक व्यवहारिक कोई दबाव आवेगा खर्चे का तो ऐसे उसको भी दूर करूंगा मैं जैसे परमात्मा रिहर्सल करके दिखाई थी। परमात्मा कबीर जी के अपना कोई बच्चे नहीं थे ना पत्नी थी ना माँ बाप थे लेकिन एक रिहर्सल करने के लिए और हमें उदाहरण देने के लिए दो मुंह बोले मात पिता नीरू और नीमा और दो मुंह बोले बेटा बेटी जो मुर्दे जिंदे किए थे बालक लड़का और लड़की 12-13 साल के थे तो उनको अपने साथ रखा एक परिवार सा दिखाया खुद कपड़ा बुनते थे उससे जो इनकम होती थी उसको खुद भी प्रयोग करते थे और भंडारा साथ में धर्म भी करते रहते थे। और जब इन नकली लोगों ने परमात्मा की बेइज्जती करनी चाही झूठी चिट्ठियां लिख दी 18 लाख व्यक्ति आगे कबीर जी भंडारा करेंगे झूठा लिख दिया तो परमेश्वर ने उन 18 के 18 लाख को 3 दिन तक भोजन करा दिया अरबों खरबों रुपए खर्च हुए। तो परमात्मा कहते हैं अगर तुम ऐसे रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे रहूंगा। तो घर त्याग कर जाने की बजाय परमात्मा ने उदाहरण दिया है कि तुम अपने घर में रहो अपना दैनिक कर्म करो लेकिन भगवान की भक्ति ऐसे करो जैसे मैं बता रहा हूं फिर तुम्हें मोक्ष होगा। खाखी और निर्वाणी नागा सिद्ध जमात चलावे हैं रण सिंह तुरही तुतकारा फिर गागड़ बांग गुटावे हैं। बता अब ये बांग क्यों पीने लगे जंगल में जाने वाले बाहर जो घर त्याग जाते

0: ता हमें ये ज्ञान ना होता कि जगन्नाथ में, काशी में, प्रयाग में, महोदधि में लो अगर पुष्कर आदि दाना व्यर्थ है तो हमारी त्योड़ी चढ़ जाती, हम नाराज हो जाते। अरीब हमारे गीसा गल है, सच बताए रखिए कति, वो तो व्यर्थ की पूजाएं थी, डले डोवा थे, जीवन खोआ थे अपने, बर्बाद कर रहे थे। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीश नहीं जल करुणा वो जग में साध कवावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं, यो भी बैदा है, बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा, बैदा क्यों जाने हमने सतगुरु बेटे नो जाने। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 15 में कहा है कि इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अर्थात जो इन्हीं की साधना, इन्हीं से मिलने वाली राहत के ऊपर दृढ़ हो चुके हैं और किसी की बात सुनने तैयार नहीं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दुष्ट कर्म करने वाले, दूषित कर्म, निकम्मे कर्म करने वाले मूर्ख, गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कहता श्री कृष्ण में प्रवेश करके कि वो मेरी भक्ति भी ना करते। अब यहां इसको उनको चार इकट्ठी चार गाली दी है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्ट कर्म करने वाले मूर्ख। पुण्यात्मा, एक बार कुंभ का मेला भरा था और कुंभ पर्व का संयोग हरिद्वार में हर की पैड़ियों पर हुआ। उसमें एक समय निर्धारित होता है, वो सीमित सा समय होता है कि इस दौरान पर भी लगेगी और उस पर भी के दौरान जो स्नान कर लेगा उसका मोक्ष हो जाएगा, जैसा भी लाभ उन्होंने सोच रखा अपना दंत कथा से। उस आधार पर ये गिरी, पुरी, नागा, कनपाड़े, वैष्णो, ये सभी संत साधु, जिनको हम संत कहते हैं, साधु कहते हैं, ये चले गए वहां नहाने के लिए पर्व में, कुंभ के मेले पे, और ये वहां इकट्ठे हो जाते हैं, गिरी गिरी वाले ग्रुप में, पुरी पुरी वाले ग्रुप में, सन्यासी सन्यासी वाले ग्रुप में, नागा नागे वाले ग्रुप में, और वैष्णो अपने वैष्णो के ग्रुप में वहां इकट्ठे हो जाते हैं। जब आता स्नान करने का समय तो इनका हेड तो आगे आगे होता, बाकी उनके पीछे पीछे स्नानार चल पड़ते। ये बहुत पुराने समय की बात है, तो उसमें सबसे पहले नागा जो कति नंगे रहते हैं वो चले गए, उनका ग्रुप चला गया स्नान करने के लिए, सबसे पहले वो अर्की पैड़ी पे वो पहुंच गए। उधर पीछे से वैष्णो साधुओं का ग्रुप आ गया। अब वैष्णो ने देखा कि नागा पहले स्नान करने वाले हैं, उन्होंने आवाज लगाई कि नागाओ हम पहले स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम बाहर आ जाओ। नागाओं ने कहा कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम नी वस्त्र है, हम कोई इच्छा भी नहीं रखते हैं, हम कपड़ा भी नहीं रखते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। तो वैष्णो साधु कहने लगे तुम नंगे रहते हो पशु की तरह, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरीर फिरडो बार मरो। अब नागा इतनी टार कड़े उठे थी उन पर, अब बताया ना, बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं, और पांचों नार पच्चीसो लड़के धुंधो धार मचावे हैं। इवो काम क्रोध, वो क्रोध रूपी राक्षस वो अंदर ही था, उसने बजा दी विसल।
1: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
2: गैलग्रीज इको एक धार्मिक रेडियो, पंजाबी रेडियो 102.7 FM, जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403

0: 238-6867 यानी 403-238-6667 से संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी ले पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तों लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हों तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 Trent Avenue, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फिश या स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नूं कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144-3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दी सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983, 825-760-0983।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी।

तेरांतना परावरया। रागासा महला चौथा। सो पुरख एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगमा पारा। सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सृजनहारा। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा। हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारन हारा। हरा पे ठाकुर हरा पे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना। एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुणाख बखाणा। जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्याव है हर त्याव है तुद जी से जान जुग मह सुखवासी। से मुक्त भये जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जे निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिनका पाओ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता। तेरी अनक करै हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पढ़ै बहु सिमरत सास्त जी कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहें सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जान ओई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैडा साई जो तौ पावै सोई थीसी। जो तू दे सोई हों पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनो कृपा करहें तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप बिछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल बिजोग मिल बिछुड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेख है जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला।
तित सर्वरडै भईले निवासा, पाणी पावक तिन्हे किया। पंक जो मोह पग नहीं चाला, हम देखा तह डूबी अले। मन एक न चेत समूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिंतु नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया। अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भव जल तरण कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ। जप तप

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवें कवियो वाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दा रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण नमन रहा हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सवै तुम काव हो आप हाद मोहे बिचाव हो सुखी बसा मोरो परवारा सेवक सिख सभा करतारा मोर अच्छा निज करदा करिया सब बैरन को आज संघरिया पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याओ जो वर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ द मुझे अवरिया मरण काल का त्रास निवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तोज जु करिहो रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के अंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो आद अंत कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोबद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर स्थूला सा पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानै घट घट के पट पट की जानै जावुद करख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा जावया करख करत हो कबहूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते वादन सृष्ट सब तारै आप आपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद आरालम रंका निर्विका निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूढ़ चारत भेदा जाको पेवना पावत भेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह भिव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा ना जाए पसारा किह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप नूप स्वरूपा रंग भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेत जकीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूँ फूल राजा है बैठा कहूँ सिमट भयो शंकर अकैठा सागरी सृष्ट दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप सजंपव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्जिते उठवा तुत पाता सकल मलेश करो रणकाता
जे अस तुझ तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित है मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय हैं ताकि काल निकट न हैं। रक्षा होए तहें सब काला दुष्ट रिष्ट ट्रें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो ताके ताप तन कमह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह छ सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा दारद दुष्ट दोख ते रहा।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सह सेती मन वजियां बाधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया, शब्दों तां गावो हरी केरा मन जनी वसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले, हर नाल हो तू मन मेरे दुख सावे सारना। अंगीकार हो करे तेरा कार्ज सब सवारना, सबना गल्लां समरत स्वामी सो क्यों मनहो बिसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नाहीं घर तेरै, घर तां तेरै सब किश है जिस देहे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसिया बाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहेब क्या नाहीं घर तेरै, साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाईया। कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पूजाईया। सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दी आए बड़िआईया। कह नानक सुनो संत हो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। बाजे पंच शब्द तित कर सुभागै, कर सुभागै शब्द बाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख होआ तित घर अनहद वाजे। आनंद

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

ਹੇਨ ਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ।

अटल भया तू जाकै सिमरन, हर निरभय पद पाया। दुख हरता इह बिद को स्वामी, तै काहे बिसराया। जावहि शरण गही कृपा निध,

वर्णो राम कहत बंधन तह छूटा, महिमा नाम कहाँ लो वर्ण, राम कहत बंधन ते टूटा। अजामल पापी जग जाने,

नानक कहत चेत चिंतामन तैपी उत्तर पार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।